दर्द के तूफान दिल में उठते हैं, लम्हे सदियों की तरह कटते हैं। हम मिटाना चाहे जो कभी आपके नक्श कहां मिटते हैं। हमेशा तन्हाइयों की मजलिस में आपका हमने इंतजार किया, आपकी खातिर कमबख्त दिल ने दर्द में सिमटी हुई गहराइयों से भी प्यार किया।

अरमानों पे छाएंगे शफक चाहत के, सोचा न था कभी। यूं हमारे चैन को इतनी तकलीफ पहुंचाएंगे लम्हे आपकी मोहब्बत के, सोचा न था कभी। यूं आपकी कशिश का जादू चलेगा जिस्मों जहां पे, कि आप ही आप नजर आएंगे अंजुमन में, सहरा में, जमी आसमां पे, सोचा न था कभी। हमेशा तन्हाइयों की मजलिस में आपका हमने इंतजार किया, आपकी खातिर कमबख्त दिल ने दर्द में सिमटी हुई कह

आपसे उम्मीद की भी तो क्या, थोड़ी सी शिद्दत, थोड़ी सी वफा, यूं हमारी इतनी सी गुजारिश कबूल करने के लिए आप हमें इतना तरसाएंगे, सोचा न था कभी। यूं हमारे ख्वाबों को मुकम्मल करने के लिए इस कदर आप हमें पल पल तड़पाएंगे, सोचा न था कभी। हमेशा तन्हाइयों की मजलिस में आपका हमने इंतजार किया,

ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: for your family treat this summer.
1: Visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
0: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
1: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
0: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
1: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300 दास ब्रेडफोर्ड 7230300

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organization's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

मैं काफी सोचता था मम्मी दे बारे, बाला और मोहम्मद पाजी दे बारे, पर सबसे ज्यादा रूपा दे बारे।

0: नफ्सेन जायकतुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रेडफोर्ड 723030।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

0: गलियां गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 01274735043।
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकनती लाए सिर्फ 2 पौंड ना कन सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300 दास ब्रेडफोर्ड 7230300।

0: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service, raise your organisation's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner Sunrise Radio.
1: कोई परोंठे शुरूंठे नहीं मिलन लगे किचन विच सारा सामान मकिया पिया है आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है
2: तुसी फिकर ए ना करो जी हने ए एशिया सुपरस्टोर जाने आ ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ उना ने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे
1: वाह जी चलो फिर आके परोंठे भी बनाने नहीं
2: एशिया सुपरस्टोर साउथफील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5 टेलीफोन 01274464446
3: A classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: गलियां गलियां घूमी ते पैरें दी जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कन्स लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: कुल्लो नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230300 दास ब्रेडफोर्ड 7230300।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 0127 473 5043.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा नखास्ता बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे एबी का, जिन्होंने पिछले दो घंटों से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम पेश किया। एबी बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक जनाब 2 बजे तक। अब से लेकर 1 बजे तक आपकी डेडिकेशन होगी। 1 और 2 के दरमियान आपके लिए लाइव कॉल्स का सिलसिला होगा जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो दोस्तों चलते हैं प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं।
1: हिट ऑफ द आवर इज ब्रॉट टू यू बाय सोफी ज्वेलर्स विद अ वाइड रेंज ऑफ डिजाइंस ऑफ ऑल काइंड्स ऑफ ज्वेलरी। सोफी ज्वेलर्स 119-21-21 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9। कॉल 0-1274-056-014।

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और इसके साथ ही चलते हैं जनाब, टाइम भी चेक कर लेते हैं, देखते हैं कि आपकी घड़ियां और हमारी घड़ियां जो हैं उनमें क्या फ़र्क है जनाब। जिस तरह हमारे दिल जुड़े हुए हैं, इस तरह घड़ियां की सुइयां भी हमारे एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। तो चलते हैं, टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:16, यानी कि 11:16। तो चलेंगे कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा आप सभी दोस्तों के लिए, उसके बाद आप दोस्तों से मुलाकात होती है।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और चलते हैं आप एक और प्यारा सा गीत आप दोस्तों के नाम करते हैं जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं, तो एंजॉय कीजिएगा इस गीत को।

0: कविता कृष्णमूर्ति और उद्धव नारायण की आवाज़ों में दोस्तों आपने प्यारा सा गीत सुना और कमर्शियल का टाइम हो गया है जनाब। तारिक जुल्फी साहब आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब। आप अपने प्यारे दोस्त हीरा साहब के लिए और अशफाक साहब के लिए गीत सुनना चाहते हैं और आपके साथ साथ जनाब सभी सुनने वालों के नाम भी ये गीत होगा जनाब। शुक्रिया फ़ोन करने का तारिक जुल्फी साहब। हीरा साहब आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया आपका भी। सोनिया बहन बर्मिंघम से आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया आपका भी। आपके नाम भी होगा और इसी गीत को कंवल साहब आपके नाम भी करेंगे, तो गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012 74 735 043.

दो प्यार भरी आवाजों में दोस्तों आपने पहला सा गीत सुना, यकीन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। ख्वाजा परवेज साहब शुक्रिया फ़ोन करने का, आपने जनाब गीत की फरमाइश की है तो ज़रूर आपके लिए प्ले करेंगे। लेकिन मैं चेक कर रहा हूँ साथ में कि हमारे पास जो है वो गीत है भी या नहीं, तो मेरे ख्याल में सिस्टम में है जनाब आपके लिए वो पुराना गीत। पुराने गीत की बारी आती है पौने पे जाके जनाब, पौने बारह होंगे तो आपकी पसंद का गीत ज़रूर अकरम साहब प्ले करूँगा। तो जनाब अब चलते हैं कमर्शियल, तो हो गई गाना भी हो गया, अब अगले गाने की जानिब बढ़ते हैं। प्यारा सा गीत है ये, गीत मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। अब्दुल कयूम साहब फ्राइजिंग हॉल वाले, आप फोन करते रहे, माधुर चाहते आपकी कॉल नहीं ले पाया हूँ, उसके लिए सो सॉरी। और जनाब आपके नाम गीत करते हैं, और अब क्योंकि कमर्शियल का टाइम हो गया है, और कमर्शियल के बाद एक सदाबहार पुराना गीत होगा, वो ख्वाजा जनाब मोहम्मद अकरम साहब, आपने इस गीत की फरमाइश की, तो आपकी पसंद का गीत आपके नाम करते हैं। और आपके साथ साथ इसी गीत को सफीउल्लाह भाई, गुलाम भाई, पंजाबी का गीत है, इन्होंने पुराना गीत चुना अकरम साहब ने, तो उनके नाम तारिजुल्फी साहब, हीरा खान साहब और दीगर तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त रेडियो की निशात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं, पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 11:46 से, यानी कि 11:46। तो चलते हैं कमर्शियल की जानेब। कमर्शियल के बाद दोस्तों आप सुनेंगे एक प्यारा सा अकरम साहब की पसंद पे एक मसूद राणा की आवाज़ में गीत। उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग।

0: परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
3: 24 hours a day. Sunrise Radio.
4: The Classic Flashback is brought to you by Chacha Jewelers Bradford. Choose from a wide range of jewellery. Chacha Jewelers, 97-99, Oak Lane, Manningham, Bradford. BD9 4QU. Call 01274 488 935.

कांगे वाला खैर मंदा, जो हालात इस वक्त मुल्क में जा रहे हैं ये जनाब टांगे फिर वापस आने ही वाले हैं और अल्लाह माफी दे। चलिए जनाब अगले गीत की जानिब चलते हैं। ये गीत मेरी जानिब से आप तमाम सुनने वालों के नाम जो इस वक्त सन रेडियो की निशात को सुन रहे हैं, थोड़ा मस्ती भरा गीत है आप सभी सुनने वालों के नाम। इंजॉय कीजिएगा इस गीत को, दो प्यार भरी आवाज़ें कमाल सानू और अलका यकनी की आवाज़ों में। ये गीत है जनाब

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और दोस्तों प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं, उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप दोस्तों ने पसंद किया होगा। कोशिश होगी इस आवर में भी आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत पेश करने की कोशिश करें। अय्यूब चौहान साहब आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। आपके नाम भी कोई गीत करेंगे थोड़ी देर के बाद। तो दोस्तों यही आवर है जिसमें आप डेडिकेशन दे सकते हैं, क्योंकि एक और दो के दरमियान जो प्रोग्राम का आखिरी हिस्सा होगा वो लाइव कॉल्स का होगा, जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकेंगे। तो इसलिए अगर कोई गीत आप सुनना चाहते हैं, किसी गीत के साथ नाम जोड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर जो है वो हमें इसी आवर में फ़ोन कीजिएगा। और रीटा बेटिया आप अमेरिका में सुन रही हैं प्रोग्राम को, तो थोड़ी देर के बाद आपके लिए भी कोई प्यारा सा गीत पेश करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त संडा रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: दोस्तों अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं कि 12:13 यानी कि 13 मिनट्स पास 12। तो चलेंगे जनाब कमर्शियल की जानेब।

कमर्शियल के बाद जो है वो आप दोस्तों के लिए एक प्यारा सा गीत होगा। आबिद भाई आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। और जनाब आप इस वक्त फैक्ट्री में काम कर रहे हैं और प्रोग्राम को भी सुन रहे हैं, तो आप के नाम करेंगे जो आने वाला गीत है कमर्शियल के बाद, इस उम्मीद के साथ कि आपको अच्छा लगेगा। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानेब, और कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत होगा। और चौधरी मुजफ्फर साहब आप भी फ़ोन कर रहे हैं, शुक्रिया आपका फ़ोन करने का। आपके नाम भी करेंगे और आपके दोस्तों के नाम भी करेंगे। तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद प्यारा सा गीत। और इसी गीत को आबिद भाई आपकी जन्म से आपके पूरे स्टाफ के नाम करेंगे, और यही गीत आयुब चौहान साहब आपके नाम भी करेंगे, और आपके साथ साथ साइमन जी आपके नाम भी करेंगे, और हाजरा जी आपके नाम भी करेंगे, आपको भूले नहीं हम, तो आप के नाम भी करते हैं। और बहुत जल्दी हमारी प्यारी बहना जो हैं वो आ जाएंगी, और सादिया जी, तो फिर आप दोनों मिल के काम अच्छी तरह करेंगी और गपशप भी करेंगी। अभी आप अकेली हैं, चलिए कोई बात नहीं, सनराइज रेडियो आपके साथ है। तो चलते हैं दोस्तों, आप सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014, सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
3: क्लास, इट्स बीन रिपोर्टेड दैट इफ वी कीप यूजिंग वाटर लाइक वी आर नाउ, बाय 2055 वी कुड बी शॉर्ट बाय 5 बिलियन लीटर्स अ डे।
4: होल्ड ऑन मिस, 2055 वी'ल बी ग्रोन अप्स बाय देन।
5: वी आर नॉट हैविंग दैट, आर वी?
4: नो। ओए, हियर इज वाटर एंड कैंस,
6: and fix those drips and drops.
7: And take shorter showers, yeah?
8: Because when we work together,
9: it all adds up.
10: So come on, you lot, search Let's Save Water.

0: धड़कन अधूरी थी, अधूरे हम, मगर अब चांद पूरा है फलक पे और अब पूरे हैं हम।
1: सुनिधि चौहान और सोनू निगम की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, साथ में

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना श्रीया घोषाल और उदर नारायण की आवाजों में। और अब फोन आया जनाब आयुष चौहान साहब का, बोलते हैं यार ये गाना मुझे एवरी संडे को बहुत याद आता था जब आप नई प्रोग्राम करने आते थे, तो फिर ये गाना सिर्फ संडे को। मैंने बोला वो क्यों, बोलते हैं नहीं बस संडे को। तो मैंने कहा ठीक है जनाब, तो शुक्रिया फ़ोन करने का और थोड़ा सा मुझे आसाने का जनाब। अल्लाह आपको सलामत रखे, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा आप सभी प्यारे दोस्तों के लिए, इस उम्मीद के साथ कि आप सभी इस गीत को एंजॉय करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल। कमर्शियल के बाद जो है वो आप दोस्तों के नाम गीत होगा, तो चलिए एंजॉय कीजिएगा कमर्शियल के बाद गीत को, और उसके बाद मिलते हैं।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord You can trust.
3: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3503

दो प्यार भरी आवाजों में आपने प्यारा सा गीत सुना। रॉकी बेना, फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपने बच्चों के लिए, यासर वारिसा साहिल के लिए गीत सुनना चाहती हैं, तो आने वाला गीत उनके नाम करते हैं, और उसके बाद अयूब चौहान साहब आपके नाम करते हैं, चौधरी मुजफ्फर साहब आपके नाम भी, आबिद भाई आपके नाम और आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम, और ग़ुलाम भाई आपके नाम और आपके स्टाफ के नाम, और उसके बाद रीटा बेटिया आप अमेरिका में सुन रही हैं आपके नाम भी करते हैं, और आपकी से आपकी मम के नाम भी करेंगे, और उसके बाद इसी गीत को अमरीन साहब आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं ये प्यारा सा गीत और एंजॉय करते हैं इस गीत को। तो चलिए सुनिएगा।

0: अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हाँ दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 12:45, यानी कि 12:45। तो चलते हैं जनाब अब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे सदाबहार पुराना गीत। वो गुलाम भाई, आपसे गपशप करके बहुत अच्छा लगा और आपके नाम करेंगे और आपके साथ साथ इसको हीरा खान साहब, तारी जुल्फी साहब, चौधरी मुजफ्फर साहब, अयूब चौहान साहब और आबिद भाई और जनाब तारी जुल्फी साहब और दीगर तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशात को सुन रहे हैं और सफीउल्ला भाई, उनके नाम भी। तो चलेंगे एक प्यारा सा गीत सुनेंगे कमर्शियल के बाद, तो एंजॉय कीजिएगा।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.
5: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative. Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.
6: My favourite radio station, Sunrise Radio.
7: I always listen to Sunrise Radio and now I can listen on the move via the Sunrise smartphone app.
8: We love Sunrise Radio.
9: The greatest station, radio station in the world.
10: Sunrise Radio.
4: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
11: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?
12: कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जिंदगी तेरी जुल्फों की नर्म छाओं में गुजरने पाती तो शादाब हो भी सकती थी। ये रंजो गम की स्याही जो दिल पे छाई है तेरी नजर की शुआओं में खो भी सकती थी, मगर ये हो ना सका। मगर ये हो ना सका और अब ये आलम है कि तू नहीं, तेरा गम, तेरी जुस्तजू भी नहीं। गुजर रही है कुछ इस तरह जिंदगी जैसे इसे किसी के सहारे की आरजू भी नहीं। न कोई राह, न मंजिल, न रोशनी का सुराग, भटक रही है अंधेरों में जिंदगी मेरी। इन्हीं अंधेरों में रह जाऊंगा कभी खोकर। मैं जानता हूं मेरी हमनफस, मगर यूं ही कभी कभी मेरे दिल में ख्याल।

जी दोस्तों, बहुत ही प्यारा गीत आप प्यारे दोस्तों के लिए पेश किया। और भानो जी, आपने फोन किया, माफ़ चाहते हैं आपकी कॉल नहीं ले पाया। अगर अभी आप फोन करेंगी तो उठा लूंगा मैं आप का फोन। तो चलते हैं, ये गीत सुनते हैं, एंजॉय करते हैं।

बाबर शाह पे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरिफ अली, उनके नाम भी, और बैठे हुए हमारे प्यारे दोस्त जनाब जफर साहब भी वहाँ, तो उनके

0: दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है। और दोस्तों, प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे और कोशिश होगी जनाब कि आप दोस्तों के लिए, अगर मौका मिला प्रोग्राम में, तो आप दोस्तों के लिए अच्छे और प्यारे से गीत पेश करने की कोशिश करेंगे। फिलहाल तो लाइव कॉल का सिलसिला होगा जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुनाना चाहें तो आप हमारे प्रोग्राम में लाइव कॉल्स में आ सकते हैं। नंबर होगा 01274 306666, नंबर रहेगा। तो चलते हैं प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से को शुरू करते हैं जनाब हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं दो प्यार भरी आवाजों में ये हिट ऑफ द आवर बाबल्स प्रोयो और साधना सरगम की आवाजों में। तो एंजॉय कीजिएगा गीत को।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6 and even 8-bedroom homes. Call 0127-428-8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: ताजा सरगम और बाबर्स प्रयोग की प्यारी सी आवाजों में दोस्तों आपने प्यारा सा गीत सुना हिट ऑफ द आवर की शक्ल में. इसके साथ ही टाइम चेक कर लेते हैं.
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक.
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:12, यानी कि 12:01. तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानिब. कमर्शियल के बाद जैसा कि मैंने कहा कि लाइव कॉल्स का सिलसिला होगा, जिसमें आप अपनी पसंद की शायरी या फिर अपनी पसंद का कोई गीत गुनगुना सकते हैं. तो हमारे साथ दो प्यारी सी शख्सियात जुड़ी हुई हैं, जनाब ब्रेडफोर्ड से नदीम मंसूर साहब और जनाब ओल्डम से अयूब चौहान साहब. तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल. कमर्शियल के बाद इन दोस्तों से मिलते हैं.
2: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and Maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
3: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे. पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ.
4: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है. शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था.
3: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
4: सोफी ज्वेलर्स

0: जी दोस्तों साथियों, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। और जैसा कि मैंने कहा कि हमारे साथ दो प्यारी सी शख्सियात जुड़ी हुई हैं जनाब, ब्रेडफोर्ड से हमारे साथ जुड़े हुए हैं नदीम मंसूर साहब और ओल्डम से अयूब चौहान साहब। अयूब चौहान साहब पहले थे और उन्होंने कहा कि क्योंकि नदीम मंसूर साहब काम पे हैं इसलिए ब्रेक पे, उन्हें पहले ले जाइएगा। तो चलते हैं जनाब तालियों की गूंज में। खुश आमदीद, वेलकम, जी एनू सत बिस्मिल्लाह कहेंगे नदीम मंसूर साहब को। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: हुजूर कैसे हैं
1: जी? अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत अल्लाह का करम है और बहुत बहुत शुक्रिया अयूब चौहान साहब का।
0: जी जी, तो जनाब बड़े दिनों के बाद आपकी प्यारी सुरीली मीठी आवाज सुनी तो बड़ा अच्छा लगा, और काफी दिनों के बाद बल्कि महीनों के बाद कह सकते हैं आप मुलाकात हुई है।
1: ऐसा ही है, ऐसा ही।
0: वैसे तो रापता रहता है फैमिली में, लेकिन रेडियो पे जो है वो महीनों के बाद आवाज सुनी है।
1: जी जी, ऐसा ही है।
0: तो चलिए, क्योंकि आप काम पे हैं और ब्रेक पे हैं तो इसलिए हम आपका टाइम बातों में नहीं गुजारना चाहते, आपसे कुछ सुन लेते हैं। तो क्या लेके आए?
1: अच्छा, मोहम्मद रफी महमूद साहब का एक गीत है।
0: माशाल्लाह,
1: आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है।
0: हो हो हो हो हो हो हो, क्या बात,
1: मेरा दिल मचल गया।
0: तो दिल में क्या कसूर, सही है सही।
1: ये फरमाइश थी मेरे प्यारे भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, अब्दुल भाई।
0: अच्छा,
1: अब्दुल खान साहब, उन्होंने और सब के लिए।
0: अच्छा अच्छा, ठीक।
1: आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपकी निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है, मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। खुली लटों की छांव में खिला खिला ये रूप है, खुली लटों की छांव में खिला खिला ये रूप है, घटा से

दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, झुकी झुकी निगाहों में भी है बला की शोखियां, झुकी झुकी निगाहों में भी है बला की शोखियां, दबी दबी हंसी में भी तड़प

मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कुसूर है, आपके निगाह ने कहा तो कुछ जरूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है, झुकी झुकी निगाह में भी है बला की शोहियां, दबी दबी हंसी में भी

मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। जहां जहां पड़े कदम वहां फिजा बदल गई। जहां जहां पड़े कदम वहां फिजा बदल गई। के जैसे सरबसर बहार आप ही में ढल गई। किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश, किसी में ये कशिश कहाँ जो आप में हुजूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या कसूर है। आपके हसीन रुख पे आज नया नूर है। मेरा दिल मचल गया तो मेरा क्या

0: सदके जाऊं, क्या बात है, क्या बात है, क्या सुरीला गीत आपने चुना। हमारे सिस्टम में नहीं है, वरना ये मैं आपके लिए ज़रूर प्ले करता, आपकी जन्म से सभी सुनने वालों के नाम भी करता। लेकिन क्या नदीम मंसूर साहब आपने गीत गाया, मौसम भी बहुत प्यारा है, आज बर्दाश्त तो हो रहा है, कल तो ज़्यादा गर्मी होगी, लेकिन आज के मौसम के लिहाज से आपने इतना सुरीला गीत गाया और आपकी आवाज़ में इतनी मिठास है कि मन कर रहा था आप गाते रहें, हम सुनते रहें और ये गीत कभी ख़त्म ना हो। लेकिन हर चीज़ की लिमिट होती है, आखिर वो अपने इख्तिताम तक पहुंचती है। तो एनीवे बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला और इतना प्यारा गीत सबके लिए पेश किया, बहुत अच्छा लगा। अल्लाह आपको सलामत रखे, हंसते मुस्कुराते रखे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। ये थे नदीम मंसूर साहब, क्या आवाज़ इनकी जनाब, ढेर सारी तालियां इनके लिए, बहुत खूब बहुत खूब, जितनी तारीफ करें उतनी कम है जनाब। ऐसा सुरीला गीत के दिल जो है वो बाग बाग हो गया जनाब। तो चलते हैं जनाब, अब जनाब हमारे साथ, जैसा कि मैंने कहा था कि जुड़े हुए हैं जनाब अयूब चौहान साहब, और साथ में अब जुड़ गए हैं जनाब हमारे साथ जावेद मीर भाई भी। तो ढेर सारी तालियों की गूंज में खुश हमदीद वेलकम जी एन कहेंगे जनाब अयूब चौहान साहब को। अयूब चौहान साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: वालेकुम सलाम अमर शहजाद भाई, आप ठीक हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह, भाइयों की दुआ से अल्लाह का बहुत करम है। आप सुनाएं, आप कैसे हैं?
1: मैं तो ठीक हूँ, लेकिन सबसे पहले मैं एक भतीजा या मेरा इधर बैठा हुआ, मुझे अंकल ही कहते हैं, तो काशिफ फिश का नाम है, तो इसने बहुत ही खूब तारीफ की है नदीम इतना खूबसूरत गाना इन्होंने गाया। तो वैसे तो मैं तो हमेशा तारीफ करता ही रहता हूँ, मैं कोई नई बात नहीं है, पर बहुत ही वैसे मुझे मिलने के लिए आगे तो बैठे हुए थे, तो इन्होंने सुना तो बहुत तारीफ की है।
0: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, ही तारीफ के काबिल तो कैसे न की जाए।
1: हाँ भाई, दुनिया तारीफ के काबिल है, बस एक आपका भाई किसी तारीफ के काबिल नहीं है। चलो
0: ना, आप भी कुछ सुरीला गाना गाए ना, कि ताकि आपकी भी कोई तारीफ करे।
1: नहीं, यही कह रहे थे अंकल आप भी कुछ गाए, मैंने कहा भाई आप मेरी कहाँ उम्र है गाने गाने की।
0: ना तो सारे और सारे काम कर लेते हैं आप, वहाँ उम्र का कोई तकाजा नहीं है, गाना गाने के लिए उम्र का तकाजा कहाँ से आ गया?
1: वो वक्त चला गया जिस दौर में हम गाना गाते थे।
0: तो उस वक्त आप जब गाना गाते थे तो साथ में जनाब भांगड़ा भी डालते थे ना, तो अब ये है कि भांगड़ा नहीं डाल सकते लेकिन गाना तो गा सकते हैं।
1: नहीं, भांगड़ा मैंने कभी नहीं डाला, सच कह रहे हो।
0: क्या कह रहे हो अयूब चौहान साहब? रुकिए रुकिए
1: जी,
0: आपने अल्फाज वापस लिए लीजिए, आप बड़ी बार डांस किया आपने।
1: नहीं, डांस नहीं मैंने किया।
0: आपने 50 बार तो मुझे बोला है, तो उस वक्त आप झूठ बोल रहे थे मेरे साथ।
1: हो सकता है मैंने नहीं आपको बोला, लेकिन हो सकता
0: नहीं, हो सकता क्या मतलब, मैंने कहा ना आपने मुझे एक बार नहीं दो बार नहीं, कितनी बार बताया आपने मुझे।
1: नहीं, मैंने नहीं कहा होगा, मैं ये
0: अभी तो कहा, अभी आप क्या, अभी आप मान रहे थे तो अभी फिर मुकर गए।
1: मुझे याद नहीं है ना, मैंने कहा
0: तो ये कहे ना मुझे याद नहीं रहा, शायद किया हो डांस।
1: देखे आप, मुझे पता कि आप छुट्टियां करके आए हैं, तो आप बिसे हुए कहते हैं, तो काफी बिसे हुए हैं।
0: नहीं, ऐसी कोई
1: ऐसा ना करे, मैं भी एक हफ्ता अपार्टमेंट में रह के आया हूँ।
0: कौन से अपार्टमेंट में? अल्लाह खैर करे, कौन से अपार्टमेंट में
1: जी? नहीं, वो बेगम बच्चे साथ से, वो हमारी ग्रैंड डॉटर की डॉटर शादी थी, वहां पर गए हुए थे, तो उधर गुजारा।
0: अच्छा अच्छा,
1: लेकिन मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ऐसे अपार्टमेंट मुझे 40-50 साल पहले मिलते तो शायद
0: आज डांस कर लेते, डांस कर लेते।
1: जिन लोगों को बाहर के खाने की आदत है, शायद हम भी कभी खा लेते।
0: अच्छा चलिए, कोई बात नहीं, बात दूर चली जाएगी तो यही रुक जाते हैं और मुद्दे पे आ जाते हैं, क्योंकि कमर्शियल भी आने वाली है और जावेद मीर भाई भी वेट कर रहे हैं।
1: इसीलिए मैं कहता हूँ मुझे छेड़ा ना करें।
0: नहीं, मैं कमाल करते हैं आप, कोई भी नहीं, हनी बीन से मैं आपको छेड़ रहा हूँ।
1: आप की आ गया हो तो
0: आप वैसे ही डंग मारना शुरू कर देते हैं, जरूरी तो नहीं वो
1: आपकी आ गया हो तो मैं शायरी शुरू करूं।
0: ठीक है ठीक है।
1: रोशन कर रहा है इस दिल में, नहीं नहीं, रोशनी कर रहा है इस दिल में, एक दिया सा जला है इस दिल में।
0: वाह बहुत खूब।
1: डर है आंखें ना फिर छलक जाएं, एक कांटा चुभा है इस दिल में।
0: वाह वाह।
1: जिसके सारे मकान खाली हैं, शहर शहर ऐसा बसा है इस दिल में।
0: वाह बहुत खूब।
1: गुनगुनाने लगी हैं सांसें भी, कोई रहने लगा है इस दिल में।
0: वाह वाह बहुत खूब।
1: कोई जिसका नहीं इलाज अरशद, दर्द ऐसा उठा है इस दिल में।
0: वाह बहुत खूब।
1: एक और छोटी सी है। अच्छा ये इस रहा कि वो जिस पे उम्र लगी है मुझे, वो जिस पे उम्र लगी है मुझे बनाने में, उसी के हाथू है शामिल, उसी के हाथ है शामिल मुझे मिटाने में। हर एक मोड़ पे है उसने दगा दिया मुझको, जिसे मैं अपना समता रहा जमाने में।
0: वाह वाह क्या बात है।
1: अजीब है कि ये खुद ही बचना चाहता है, रजा हवा की साथ थी शामिल दिया जलाने में।
0: वाह बहुत खूब।
1: अच्छा ये तो शायरी होगी, अब आपको लतीफे सुना देते हैं।
0: जरूर जरूर।
1: एक लड़की बोली वेटर से, वो जो सामने खूबसूरत लड़का बैठा हुआ है मुझे एक घंटे से परेशान कर रहा है।
0: अच्छा जी।
1: वेटर कहता मगर मैं तो उस उधर ही देख रहा था, उसने आपको तो देखा तक नहीं। लड़की बोली यही तो सारी परेशानी है।
0: सही है।
1: ये तो ये हो गया। एक और है। कुछ लोग होते हैं ना वो कुछ चीजें बनाने के लिए चंदा चंदा ले करते हैं ना, तो एक आदमी कब्रिस्तान के इर्द गिर्द दीवार बनाने के लिए कुछ आप भी दे दे। दूसरे आदमी ने कहा कब्रिस्तान के इर्द गिर्द दीवार बनाने की क्या जरूरत है, जो जो अंदर हैं वो बाहर नहीं आ सकते, जो बाहर हैं अपनी मर्जी से कभी अंदर नहीं जाएंगे।
0: क्या बात क्या बात, क्या कहूँ, वो असली वाले भूल गए।
1: अच्छा भूल गए।
0: भूल गए।
1: मेरे लतीफे से डर हो
0: गया। नहीं नहीं नहीं नहीं, वो सोच रहे हैं कि वो मेरे ख्याल में मरने का डर पड़ गया ना उनको।
1: जी। अच्छा एक और आपको सुना देता हूँ फिर। बिजी तो नहीं है?
0: नहीं नहीं कोई आप सुनाए सुनाए।
1: नहीं किधर नहीं छोड़ रहे, भूल गए, पता नहीं किधर रह गया, छोड़ रहे। किसी दिन सुना दें, पता नहीं वो काट दिया मैंने क्या किया, इसमें बुकें मेरे पास बहुत सारी पड़ी हैं, कोई पता नहीं क्या होता। ठीक है, हमारे चौधरी फरियाद साहब को और चौधरी मुजफ्फर साहब को और जितने भी आप सनराइज की फैमिली सबको हमारी तरफ से मोहब्बत भरा सलाम, और इंशाल्लाह जिंदगी ने वफा की तो फिर संडे को आप मुलाकात होगी। ठीक है
0: इंशाल्लाह इंशाल्लाह।
1: और
0: बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। ढेर सारी तालियां यूं चौहान साहब के लिए जनाब। और इसके साथ ही वक्त हमें बता रहा है कि कमर्शियल का टाइम हो गया, और कमर्शियल के बाद जावेद मीर भाई को सुनेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद मिलते हैं।
2: Looking for a quality home to rent?
3: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
2: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 3535. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
4: Have you noticed the way fans shout at football matches?
5: Oh, wake up!
4: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.
6: You're listening to Sunrise Radio.
0: जी दोस्तों साथियों, आप सनराइज रेडियो को सुन रहे हैं और आमिर शहजाद आपसे मुखातब है और लाइव कॉल का सिलसिला है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं जावेद मीर भाई और साथ में जुड़े हुए हैं राणा नवीद साहब स्वीडन से। तो ढेर सारी तालियों की गूंज में खुश आमदीद वेलकम जी अनु कहेंगे जावेद मीर भाई को। जावेद मीर भाई, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
7: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: कैसे हैं भाईजान? अल्लाह हमेशा आपको सलामत रखे। अल्लाह हमेशा सलामत रखे। तो ठीक है भाईजान, आप करें क्योंकि अब बातें नहीं करेंगे हम लोग।
7: मेरी तरफ से तमाम सुनने वालों को बहुत बहुत अस्सलाम है।
0: जी वालेकुम सलाम।
7: राणा नवीद साहब को भी बहुत बहुत अस्सलाम।
0: जी सर।
7: गुजरे हैं आज इश्क में

हम उस मकाम से गुजरे हैं, ओ बेवफा

0: वाह वाह क्या बात है, बहुत प्यारा गीत, बहुत ही प्यारा गीत, बहुत अच्छा लगा मेरे भाई आपने ये गाना गाया, हमारे सिस्टम में नहीं है लेकिन बहुत ही प्यारा गीत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मेरी जान, अपना बहुत सा ख्याल रखिए, दो हमें याद रखिए, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। ये थे जावेद मीर भाई, क्या गीत इन्होंने गाया जनाब, होए होए होए होए होए होए होए, लुत्फ भी आ गया, मज़ा आ गया गीत सुन के। और अब जनाब तालियों की गूंज में चलते हैं स्वीडन में, जहाँ राणा रणवीर साहब इस लाइन पे मौजूद है। राणा साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, राणा साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
1: वो किधर? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
0: मैं तो सोच रहा था कि कदे गड्डी जड़ी है स्टेशन तो छुट गई है ते राणा साहब पीछे रह गए ने।
1: नहीं नहीं नहीं, मैं सुन रहा सी, तुम म्यूट कीता सी ना।
0: अच्छा अच्छा अच्छा,
1: मुझे लगता है वक्त में गुंजाइश कम है।
0: हाँ लेकिन आप जल्दी में, आपके पास टाइम नहीं है।
1: मेरे पास तो टाइम है लेकिन आपका भी लिहाज करना है।
0: हाँ वो तो है, लेकिन मैं सोच रहा था कि कमर्शियल के बाद भी सुन सकते हैं ना तुम। चलिए
1: नहीं, मैं वेट करता हूँ, आप चला लें ताकि फिर वो।
0: नहीं नहीं, अभी आप मेरे पास दो तीन मिनट है ना, आप सुनाए ना कुछ और फिर मैं होल्ड कर लूंगा आपको।
1: चलें ठीक है। ये जो रंगीन तबस्सुम की अदा है,
0: वाह वाह क्या बात है,
1: मुझको लगता है कोई मेरे सेवा है मुझ में।
0: वाह
1: शुक्रिया, खुद भी हैरान हूँ अजल से ये क्या है मुझ में, कौन शाहरग से मेरी बोल रहा है मुझ में।
0: वाह वाह क्या बात है।
1: शुक्रिया, उम्र भर जिसको तेरे गम की अमानत समझा, अब वही तारे नफस टूट गया है मुझ में।
0: वाह वाह वाह
1: शुक्रिया। एक खुशबू से उभरती है नफस से मेरे, एक खुशबू सी उभरती है नफस से मेरे, हो ना हो आज कोई आन बसा है मुझ में।
0: क्या बात है क्या बात है
1: शुक्रिया। और अरे भाई, मेरे कदमों पे जमाने की जबी झुक जाए,
0: हाय हाय,
1: देवताओं की तरह एक अना है मुझ में।
0: बहुत खूब
1: शुक्रिया। तुम तो कुन कह के निगाहों से छुपे हो लेकिन हर घड़ी एक नया हश्र बपा है मुझ में।
0: वाह क्या बात
1: शुक्रिया। कौन था जो मेरे एहसास को रोशन करता, उम्र भर सिर्फ मेरा दिल ही जला है मुझे।
0: वाह क्या बात है बहुत खूब
1: शुक्रिया। और दिल कभी जुल्मते फरदा से हरासा ना हुआ, दिल कभी जुल्मते फरदा से हरासा ना हुआ, एक खुर्शीद नया रोज उगा है मुझ में।
0: वाह बहुत खूब
1: शुक्रिया। और तलख कामी से तो कुछ और निखरती है हयात,
0: हाय हाय,
1: तलख गामी से तो कुछ और निखरती है हयात, किस लिए जहर कोई घोल रहा है मुझ में।
0: वाह बहुत खूब,
1: किस लिए जहर कोई घोल रहा है मुझ में। शुक्रिया, आप ब्रेक लीजिए फिर मैं होल्ड करता हूँ आपकी नजर।
0: या आप ऐसा कर लें दोबारा फोन कीजिएगा क्योंकि काफी लंबा हो जाएगा, अभी जोर की अजान का वक्त हो गया है और उसके बाद कमर्शियल होगी।
1: अगर कोई और दोस्त भाई आ गया तो उनको मौका देंगे, वरना मैं ट्राई करूंगा आपको ब्रेक के बाद।
0: ठीक है मेरी जान,
1: ठीक है,
0: बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत मेहरबानी, अल्लाह आपको सलामत रखे। ढेर सारी तालियां राणा रणवीर साहब के लिए, क्या शायरी की इन्होंने, बहुत अच्छा लगा। और अब जनाब जैसा कि राणा साहब बड़े समझदार बंदे हैं और एहसास करने वाले हैं, उनको समझ आ गई कि जनाब यहाँ इंग्लैंड में जो है जोर की अजान का वक्त हो चुका है, तो इसलिए उन्होंने फिर जनाब टाइम को देखते हुए, टाइम की नज़ाकत को समझते हुए छोड़ दी लाइन। तो अब चलते हैं जनाब, सुनते हैं जोर की अजान, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा।
2: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है, आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी सामिन, ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है। अभी आपने जोहर की अजान सुनी और इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:44, यानी कि 1:44, तो अब कमर्शियल का टाइम हो गया है, तो चलेंगे सुनेंगे कमर्शियल, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं, सुनते रहिएगा और कमर्शियल के बाद आप एक प्यारा सा गीत सुनेंगे।

बहारों पूर बरसाओ मेरा महबूब आया है। क्या प्यारा गीत था, आप सभी दोस्तों के लिए पेश किया था रफ़ी साहब की सुरीली और मीठी आवाज़ में। और दोस्तों अब क्या है कि खान साहब आपने फ़ोन किया, शुक्रिया। अभी आपने रेडियो ऑन किया, लेकिन ये लाइव कॉल्स का प्रोग्राम होता है, इसमें डेडिकेशन नहीं होती है इस आवर में। तो माजर चाहता हूँ, जो गीत पेश किया समझो आपके नाम ही था, सभी सुनने वालों के नाम था। तो अब जनाब चलेंगे, एक और गीत आप दोस्तों के लिए पेश करता हूँ इस उम्मीद के साथ कि आप इसे पसंद करेंगे, क्योंकि ये गाना तो एंड पे ही होना चाहिए था जब आप इजाज़त लेते हैं। तो इसमें भी कुछ ऐसा ही है कि आप कब मिलोगे। तो ये तो मेरे ख़्याल में ऐसा कर लेते हैं कि इस गीत को आखिरी गीत इस आवर का यानी कि प्रोग्राम का कर लेते हैं। और उम्मीद रखता हूँ आज का प्रोग्राम आप दोस्तों ने पसंद किया होगा। सभी दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया जो शुरू से मेरा प्रोग्राम सुनते हैं, मेरा साथ देते हैं, आखिर तक निभाते हैं, उनका तहे दिल से शुक्रिया। और जो दोस्त प्रोग्राम में सुनते रहते हैं थोड़ी देर, फिर अपने कामों में लग जाते हैं, फिर थोड़ा सुनते हैं, तो यानी कि प्रोग्राम सुनते हैं आप, जो भी सुनते हैं आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और उन दोस्तों का खास कर शुक्रिया जो दोस्त प्रोग्राम सुनते भी हैं और फिर फ़ोन भी करके बताते भी हैं कि वो प्रोग्राम सुन रहे हैं, तो जनाब अच्छा लगता है। तो दोस्तों मुझे आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात कल सुबह 11 बजे होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

सत्यकाल एंड वेरी वेरी गुड डे। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और आपका आज का दिन अभी तक खूबसूरती से गुजर रहा होगा। और मेरी दुआ है कि आप हमेशा सलामत रहें, खुश रहें, आबाद रहें और जहाँ भी रहें अपनों के साथ साथ रहें। आमीन। और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको हमेशा हमेशा अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे और आप सबके दुख दर्द, बीमारियाँ, परेशानियाँ जो भी हैं उनको दूर फरमाए, बहुत जल्द आपको सेहत याब, तंदरुस्ती और आपकी मुश्किलात को आसान कर दे। आमीन। मैं हूं शहनाज मंसूर, आपके साथ रहूंगी अगले 3 घंटे। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा साथ ज़रूर निभाएंगे। मोहब्बतों, चाहतों और दुआओं का सफ़र है आपके साथ साथ, हमें गुजारना है, आपके साथ साथ चलना है। बहुत बहुत शुक्रिया अगर आप भी हमारा साथ देंगे।

0: नफसेन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखे। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 723030, दास ब्रेडफोर्ड 723030।
2: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses. Free health and social care courses. Free childcare courses. Free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.
3: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A 3-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. 3 enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165, Raman 078 341 77866, Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: station, radio station in the world. Sunrise Radio. बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 01274735043

मुझे उम्मीद है कि आपको आज का शो अभी तक जो भी हमने पेश किया गीत वो आपको पसंद आ रहे होंगे और यकीनन आने वाले गीत भी आपको अच्छे लगेंगे। बहुत ही खूबसूरत और प्यार भरे गीत हैं जिन्हें हम आपके लिए लेकर आए हैं और खूबसूरत गीतों का खजाना है जिसे लौटाएंगे हम आप पर। चाहेंगे आपका खूबसूरत सा साथ और बिताएंगे इस खूबसूरत सफर को आपके साथ साथ।

तमाम साथियों का, भाइयों का, बहनों का बेहद शुक्रिया जो कि हमारे प्रोग्राम की जीनत बन चुके हैं और जिनका साथ और प्यार हमें मिला। आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, आपकी मशकूर और ममनून हूँ कि आप अपने कीमती वक्त से चंद लम्हे हमें नवाजते हैं। और आपका साथ हमेशा बहुत प्यारा होता है और आपके साथ साथ ये सफ़र और भी खूबसूरत और हंसी हो जाता है। मैं आपका जितना भी शुक्रिया अदा करूँ बहुत कम है आपके साथ का और प्यार का। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया।

कमर्शियल्स और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका हम स्वागत करते हैं, खुश आमदीद, वेलकम और जी आई एन कहते हैं। आप सबका हमारे साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। मुझे उम्मीद है कि इस घंटे में भी और अगले घंटे में भी आप हमारा साथ ज़रूर निभाएंगे जैसे कि निभाते आए हैं। आपके साथ साथ ये सफ़र बहुत ही खूबसूरती से आगे बढ़ रहा है और आप हमारे प्रोग्राम की जीनत होते हैं और आप हमारे प्रोग्राम की रौनक होते हैं। जब आप आते हैं तो ये महफिल और भी पुर रौनक हो जाती है और हमारा सफ़र खूबसूरत

0: कफ्सन जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230 30 दस ब्रेडफोर्ड 7230 30।
2: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831 165. Raman 078 341 77866. Usha 0793 178 8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

गाना।

92.2 FM पे और www.sunriseradio.fm पे। इसके अलावा आप हमें सुन पाते हैं डीबी के जरिए ब्रैडफोर्ड, लीज, मैनचेस्टर और इर्द गिर्द के इलाकों में, और 100.6 FM पे आप हमें सुनते हैं कालडर डेल में। इसके अलावा भी बहुत से तरीके हैं सनराइज रेडियो को सुनने के, आप आपके जरिए भी हमें सुन पाते हैं और नेट पे भी, गूगल के जरिए भी आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और जब चाहें जहाँ चाहें आप हमें सुन पाते हैं सनराइज रेडियो को 24 घंटे। और मैं हूँ शहनाज मंसूर, आपके साथ साथ हूँ खूबसूरत गीतों के साथ। आपका शुक्रिया।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमतां ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
3: 24 hours a day. Sunrise Radio. It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

ताज़ा हो गई होगी, क्योंकि हमेशा ऐसा ही होता है कि जब आप गीत सुनते हैं तो उसके साथ हमारी बहुत सारी यादें जुड़ी होती है। यही नहीं कि हम गीत सुनते हैं बल्कि ये हमें वहाँ पहुँचा देता है जहाँ हमने पहली बार ये गीत सुना था, और ऐसे लगता है कि हम फिर से उसी जगह पे लौट आए हैं और वही दोस्त और वही साथी फिर से हमारे साथ बैठे हैं और इस गीत का मज़ा ले रहे हैं, और इस गीत का मज़ा और भी दुगना हो जाता है। जैसे कि ये आने वाला गीत भी हम आपके लिए लेके आए हैं, यकीनन आपकी यादों को ताज़ा करेगा और आपकी दिल की धड़कनों को भी तेज करेगा।

प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी घंटे में हम आन पहुंचे हैं आप सभी का एक बार फिर से। खैर मकदम है जी आयानु वेलकम। पिछले दो घंटे साथ निभाने का, हमारे साथ जुड़े रहने का बेहद शुक्रिया। मुझे यकीन है कि इस घंटे में भी आप ज़रूर हमारा साथ निभाएंगे और इस घंटे में भी जो गीत हम आपके लिए पेश करेंगे वो भी आप ही के लिए होंगे और आखिर तक आप ही के लिए रहेंगे। सुनते रहिएगा और साथ साथ रहिएगा। आपके साथ का शुक्रिया।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सूफिया बहन की सूफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सूफी ज्वेलर्स 1192121।

अहमद फराज कहते हैं कि किसी शाम मुझे भी याद कर लिया करो, किसी शाम मुझे भी याद कर लिया करो, मैं दोस्त पुराना सही मगर जिंदा तो हूँ। और इसके जवाब में परी शाकर कहती हैं, तुमने कहा था हर शाम तेरा हाल पूछेंगे, तुमने कहा था हर शाम तेरा हाल पूछेंगे, तुम बदल गए हो या तुम्हारे शहर में शाम नहीं होती। चंद अशआर आपके गोशे गुजार किए, मुझे यकीन है कि आपने इंजॉय किए होंगे। और आप हमेशा शायरी पसंद करते हैं और शायरी बोलना भी पसंद करते हैं, और मुझे भी कभी कभी शौक आ जाता है कि आपको कुछ अशआर सुनाऊं। ऐसे ही चंद ये जो अशआर थे आपके लिए पेश किए, और अब आपके लिए लेके आ रही हूँ एक बहुत ही खूबसूरत सा गीत जो कि यकीनन आप पसंद करेंगे और इंजॉय भी करेंगे।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74-735-043.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

बहुत ही खूबसूरत रहा क्योंकि आप हमारे हम सफ़र थे और इस सफ़र को खूबसूरत बनाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ साथ थे इसीलिए ये 3 घंटे बहुत ही खूबसूरती से और बहुत ही हसीन रहे क्योंकि आपका साथ और आपका प्यार और आपकी दुआएं हमारे साथ थी। इंशाल्लाह हमारा प्यार और हमारी दुआएं भी हमेशा आपके साथ साथ रहेंगी और हमेशा रहेंगी। आपके लिए दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सलामत रखे। आप जहां भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, शाद रहें। मिलते रहेंगे सनराइज रेडियो पर इंशाल्लाह। आज की मुलाकात बस यहीं तक थी, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में। तब तक आप सबका और हमारा अल्लाह निगेबान। बाय फॉर नाउ, खुदा हाफिज, गुड बाय।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश, मैथ्स, ईसॉल कोर्सेज। चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शरायत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
3: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद उत्सव विद आनंद मूर्ति गुरुमा इन बर्मिंगम। डिस्कवर प्रैक्टिकल टूल्स टू क्वाइटन द माइंड एंड एक्सपीरियंस लास्टिंग इनर पीस डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्ड मास्टर। A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn

0: part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 692 3788.
2: Official media partner Sunrise Radio.
3: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।
4: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: It's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
1: Hold on, miss. 2055? We'll be grown up by then.
2: We're not having that, are we?
1: No. Oi, hear that? It's water and cans.
3: And fix those drips and drops.
4: And take shorter showers, yeah?
3: Because when we work together, it all adds up.
4: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
5: गलियां गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया
6: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना
5: चाचा केड़ा चाचा
6: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिन्ना है स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्के नतीला है सिर्फ दो पौंड ना कानस लाने ना एक पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
5: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
6: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274488935
7: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.

0: Have you tried Caratino Better Ghee? The healthier, low-cost butter ghee alternative, Caratino Better Ghee, is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
1: गलियां गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ दो पौंड ना कानस लाने ना एक पौंड छापा दे बंगा नी कोई मजदूरी नी ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
2: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274488935।

0: Ladies and gentlemen, party people in the place to be, all you listeners.
1: Salaam namaste, salaam namaste.
2: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?
3: Always Khan.
4: हम शरीफ क्या हुए?
5: मैं वापस
4: पूरी दुनिया ही बदमाश
3: हूँ. Always.
5: देखो मैं हूँ कहाँ.
3: Always Khan.
5: आ रहा हूँ पलट के.

0: Ryan, that was the hit of the hour. आपने enjoy किया, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का. Thank you very much. आपने हमारा साथ देने, thank you very much. और यहाँ पे हमने करना है time check.
1: Sunrise Radio. Your soundtrack, your time check.
0: Right, the time in the studio is 18 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the power is gone. यहाँ पे छोटी सी नन्नी मुन्नी सी ब्रेक होगी. ब्रेक के फौरन बाद आशरफ दोस्तों का नाम लूंगा जो दोस्त फोन कर रहे हैं और करने वाले हैं और कर चुके हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और छा गए मैनचेस्टर वाले, आप छा गए, क्या क्या नंबर ले गए आज मैनचेस्टर वाले नंबर ले गए, क्या कहने. बहुत बहुत शुक्रिया आशरफ का भी, थैंक यू वेरी मच. और आपका शुक्रिया अदा करता हूँ ब्रैडफोर्ड वालों का भी और हडर्सफील्ड और नो फॉरगेटिंग बर्मिंघम वाले. और बर्मिंघम वाले भी आ गए, ब्रैडफोर्ड वाले आ गए, मिल्टन कीनवी वाले आ गए और क्या कहने, और स्वीडनिश भी आ गए. और हमें क्या चाहिए, क्या चाहिए हमें. और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके. और नो फॉरगेटिंग ऑल द चोरी चोरी छुपके छुपके लिसनर्स वाल, आप भी हमारा प्रोग्राम सुने. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच.
2: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
4: We're not having that, are we?
3: No. Oi, you lot, it's water and candy.

0: and fix those drips and drops.
1: And take shorter showers, yeah?
0: Because when we work together, it all adds up.
2: So come on, you lot, search Let's Save Water.
3: गलियां गलियां घूमी ते पैरां दी जुत्तियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
4: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
3: चाचा केड़ा चाचा?
4: चाचा जूलर ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पाउंड ना कन सलाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
4: चाचा जूलर ओकलैंड ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
5: Right, ladies and gentlemen, boys and girls, according to Sunil, or welcome, Gianna Kush Ahmedine. I'm going to be moving on to the beautiful track which I'm going to be playing for Aski Hamari Pele Colon, Boba Shukri and Kabi. I think I have a Boba Shukri Akabi, Apne Ame, Shabko Slam Peshkar, Boba Shukri Akabi, or Gianna Gid me Aki Pesh Kunga, Aki Terrace, given by Smitraji, or Aki Saki Selye, only Yoga Mujimida, you can go enjoy Kanige, Bohot Bohot Shukriya Yigid. आपके लिए भी होगा एंड आई होप यू गोना एंजॉय दिस वंडरफुल ट्यून। राणा नवीद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप ही मेरा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। और ये गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और ये गीत आपके लिए। एंजॉय द ट्रैक।

0: Wow, that was one of my favorite tunes. Moving on to the art break, छोटी सी art break के break के फौरन बाद हमारे मोहतरम में हमारे भाई हमारे दोस्त अब्दुल कयूम साहब फ्लाइंगर से हैं. माशाल्लाह ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव वेरी वेरी केयरफुली, और आप ही धूप लगा रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया, इन्जॉय कर रहे हैं मौसम को, बहुत अच्छा लगा. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी वाजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. आपके दोस्तों का नाम लूँगा थोड़ी देर के बाद. बहुत बहुत शुक्रिया राना नवीद साहब, बहुत शुक्रिया आपका. दिक्कत साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका. गिदन भाई, सुमित्रा जी बहुत बहुत शुक्रिया, सोनिया जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, रेखा जी बहुत बहुत शुक्रिया, अजीत कौर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और अली भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप हमारा साथ दे रहे हैं. और चौधरी उमर साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप ड्राइव कर रहे हैं वेरी ड्राइव वेरी वेरी वेरी केयरफुली. आज मौसम को एंजॉय करें. एंड इट हैज़ बीन सच अ वंडरफुल वंडरफुल इवनिंग, वंडरफुल डे टुडे, एंड व्हाट अ अमेजिंग डे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका. शबरेज भाई हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और वो भी इंजॉय कर रहे हैं मौसम को. आज मौसम वाकई खूबसूरत है, और हमेशा मैं कहता हूँ और आज भी मैं कहूँगा, मौसम जो भी हो, दिल का क्या क्या कह रहा है और दिल का मौसम क्या कह रहा है आपको. और दिल का मौसम अच्छा है तो एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल. और हमेशा मैं कहता हूँ कि जिंदगी खूबसूरत है, और इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू. और आप कैसे देखने जाते हैं और क्या क्या कर रहे हैं, आपकी सोच कैसी है, समझ कैसी है, और जो खूबसूरत आंखें हैं वो क्या कह रही है. ठीक है, जिंदगी वाकई खूबसूरत है, और दुनिया में सब खूबसूरत है, एवरीबॉडी इज खूबसूरत है, एंड इंक्लूडिंग यू ऑन द पर्सन बिहाइंड यू इज वेल. और ये सोचने की बात है, और वही सोचे और समझे. ठीक है ना. और हमारे मोहतरम भाई हैं, दोस्त हैं, मदरसा कियानी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. बिस्मिल्ला आपको भी वेलकम कहता हूँ, जी कहता हूँ, खुश आमदीद कहता हूँ, सद बिस्मिल्ला कहता हूँ. आपके लिए दुआएं हैं हमारे लिए, और आपके लिए भी दुआएं हैं. माशाल्लाह मशा दुआएं करते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने हमारा साथ देने. और यहाँ पर हमने छोटी सी ब्रेक करेंगे. कीप इट लॉक्ड टू सनराइज रेडियो.
1: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio connects your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74735 043.
3: Sunrise and Music.
0: राइट, वेलकम बैक लिसनर. यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम. आने वाला गीत में पेश करूंगा हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और मीठा जी हैं, अब मीठा जी आ गए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और चौधरी रुखसार भाई हैं, बहुत बहुत शुक्रिया. आने वाला गीत में आपके लिए पेश करूंगा. मुझे उम्मीद है यकीन है कि आप इंजॉय करेंगे, और आपके लिए और आपकी पूरी टीम के लिए और पूरे मैनचेस्टर वालों के लिए मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इंजॉय करेंगे. और यही गीत में पेश करूंगा हमारे वाजिद भाई हैं, उनकी दोस्तों की लिस्ट है. चौधरी आरसफ साहब हैं, चौधरी फरियाज साहब हैं, परवेज खान हैं, महबूब लाई साहब हैं, तारक जुल्फी साहब हैं, जवेद मीर साहब हैं, तारक भारती हैं, शकील साहब हैं, ईरा खान हैं, और चौधरी एम उस्मान हैं, शफीउल्ला हैं, और अयूब जवान साहब हैं, चौधरी मनीष साहब चक्की वाले हैं, और ख्वाजा मोहम्मद शफीक हैं, और रफी साहब हैं, अतिका साहबा हैं, जंगीर फमजीद ब्रिश हैं, और ये इनका दोस्तों के नाम हैं. बहुत बहुत शुक्रिया वाजिद भाई, आपने हमें याद किया, और आपके लिए भी होगा, और आना नबी साहब आपके लिए भी होगा, और हमारे मोहतरे में चौधरी रुखसार भाई ये गीत आपके लिए. बहुत बहुत शुक्रिया, और हमें अच्छा लगा कि आप हमारे साथ दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमें अच्छा लगा. बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई का. और अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, शादाबाद रखे, और हमारा साथ दे रहे हैं. और चैंपियन में शाम मुझे कहते हैं चौधरी रुखसार भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमारे लिए दुआएँ करेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और ये गीत मैं आपके लिए पेश करने जा रहा हूँ. बहुत बहुत शुक्रिया, इन्जॉय द ट्रैक एज़ वेल. और गिदन भाई, सुमित्रा जी, ये गीत आपके लिए भी होगा, और बिल्लो जी, ये गीत आपके लिए भी होगा. मुझे उम्मीद है जी कि निकाब इंजॉय करेंगे. इंजॉय द ट्रैक.

वाओ व्हाट अ वंडरफुल जीनी, और क्या कहेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका और थैंक यू वेरी मच के आप आए हैं। और अजीत कौर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने हमें याद किया, फ़ोन किया, उजरा अफजाई किया, दुआएं दी हमें, और आपके साथ बड़ा ही पुराना रिश्ता है माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमें अच्छा लगा आप हमारा साथ दें, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारी अपनी फैमिली हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया के याद करने का, उजरा अफजाई करने का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, और फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा, मुझे उम्मीद और यकीन है कि आप इस गीत को इन्जॉय करेंगे, और आपकी जो सखियत से लिए हैं उनके लिए गीत होगा, मुझे उम्मीद और यकीन है कि वो भी इन्जॉय करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, फ़ोन किया, और वही बात हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमारे जो साथ है, पुरानी यादें हैं आपके साथ हैं, और आप हमारे साथ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमें अच्छा लगा कि आप हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और आने वाला गीत मैं आपके लिए पेश करूँगा, और यही गीत मैं पेश करूँगा, सोनी जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और आपके लिए होगा, मुझे उम्मीद है यकीन कि आप इन्जॉय करेंगे। और सिमी जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आपने भी हमें याद करें, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी कि आपने हमारा साथ दे रहे हैं। और आने वाला गीत मैं आपके लिए भी पेश करूंगा, इट्स अ वंडरफुल ट्रैक आप सब दोस्तों के लिए होगा, और शुक्रान भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप ही हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। शबरेज भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप ही हमारा साथ दे रहे हैं, और ये वो गीत मैं आपके लिए पेश करूंगा, मुझे उम्मीद और यकीन है कि इस गीत को आप इंजॉय करेंगे, और बड़ा ही खूबसूरत और बड़ा ही नायाब गीत है। और नदीम मंसूर साहब आपके लिए भी होगा, आप भी क्या याद करेंगे मेरे भाई, और वंडरफुल गीत आप दोस्तों के लिए होगा, तो और बहुत ही अच्छा लगा कि आप ही हमारा साथ दे रहे हैं। और जो मैनचेस्टर में प्रोग्राम सुना जा रहा है, उन दोस्तों का भी शुक्रगुजार हूँ, ममनून उनका कि आप ही हमारा साथ दे रहे हैं, थैंक यू वेरी मच। आने वाला गीत मैं आपके लिए भी पेश करने जा रहा हूँ, मुझे उम्मीद है यकीन है कि आप इन्जॉय करेंगे, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वो गीत है जो मैं पेश करने जा रहा हूँ आप दोस्तों के लिए, वंडरफुल ट्यून फॉर वंडरफुल कॉलर्स, आप मेरे अपने हैं, मेरे सज्जन हैं, और सज्जनों की महफिल हो रही है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और थैंक यू वेरी मच। ये एक फैमिली प्रोग्राम है, फैमिली शो है, जिसमें हम शिरकत करते हैं, उजरा अफजाई करते हैं। मुदस्सिर कियानी साहब, ये गीत आपके लिए होगा, और आपकी तरफ से आपके दोस्तों के नाम होगा, मुझे उम्मीद है यकीन है कि आप इन्जॉय करेंगे, वंडरफुल ट्यून है, और आपने इस गीत को आपने इन्जॉय करना है, और डू लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ दिस ट्रैक, और क्योंकि ये बहुत खूबसूरत गीत है और मेरा फेवरेट गीत है, और इस गीत को आपने इंजॉय करेंगे, और इसका मुझे आपने बताना है कि आपने कैसे इसको गीत इंजॉय किया है, और आपने किया आपने नहीं किया, क्योंकि मेरा जो फेवरेट गीत है। और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने भी हमारा साथ दे रहे हैं, और टाइम निकाल के हमें फ़ोन किया आपने, और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच फ़ोन करने का, उजरा अफजाई करने का, दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यही गीत मैं पेश करूँगा, ऑल द चोरी चोरी छुपके छुपके, लिस्टनिंग इंजॉय द ट्रैक। इस गजल बाय द वे एक खूबसूरत गजल है आप सब दोस्तों के लिए, इंजॉय।

0: Right, that was a wonderful, wonderful, wonderful ghazal, or that was wonderful going out to Gidan Bhai और हमारे पावी जान सुमित्रा जी के लिए था, especially उनके लिए, और उन्होंने enjoy किया होगा definitely. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, thank you very much. और यहाँ पे हमने क्या करना है कि क्या करेंगे यहाँ पे, कंप्यूटर जी हमारे साथ आज मस्ती नहीं करनी है, ठीक है ना? कभी मस्ती आप क्यों करते हैं यार मेरे साथ, ये क्या मसला, क्या माजरा किया आपके साथ, और क्या करें यार यहाँ पे. एनीवे टाइम चेक करते हैं.
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Well, the time in the studio is 43 minutes past 8 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the Parviz Khan. यहाँ पे निकी जी ब्रेक होगी, छोटी सी नन्नी मुन्नी सी ब्रेक होगी, और ब्रेक के फौरन बाद देखते हैं कि क्या होता है, और एक बहुत ही ज़रूरी काम भी करना है मैंने, और बहुत ही ज़रूरी काम करना है, बहुत ही ज़रूरी काम करना है, और वो बहुत ही ज़रूरी है. एनीवे यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे, कीप इट लॉक्ड ऑन. इफ यू आर ड्राइविंग एंड ड्राइव विद केयर, एंड इफ यू आर आउट एंड अबाउट स्टिक अराउंड विद द सनराइज रेडियो, एंड इफ यू आर इन द पार्क मेक श्योर यू स्टिक अराउंड विद द सनराइज रेडियो, एंड डू लिसन टू सनराइज रेडियो ऑन 100.6 FM and 103.2 FM on a DAP plus if you are driving, and thank you. And if you are in working away, do you know arkad nal barkat honi hai, aap zindagi ko enjoy kare, and do enjoy the music as well. And if you are just woken up, and good evening to you all, where have you been. Anyway, this is gonna be the nikki ji break hogi, aur break ke foran dekhte hain ki ye kya keh rahe hain, hame choti si break bhi sunenge aur dekhte hain ki ye kahan se kaun si cheez mil rahi hai, aur kidhar se mil rahi hai, aur ye bhi kya story hai, kya majra kya hai, theek hai na? Isko ko hum dekhte hain, aur ye bhi bahut zaruri hai.
2: Music. Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
3: Hold on, miss. 2055? We'll be grown ups by then.
4: We're not having that, are we?
3: No. Oi, hear that? It's water and cans.
5: And fix those drips and drops.
6: And take shorter showers, yeah?
7: Because when we work together,
8: it all adds up.
9: So come on, you lot, search Let's Save Water.
1: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for Realizing the True Self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202, Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226, Mirdosh Kumar 07899055525, Gurkirit 07886545970, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
0: Right, welcome back, listener. You're listening to Radio 103.2 FM. Bobo Shukriya, sab doston jo bhi mere behan bhaiyon saath hain, dost sahab aziz hain, hamara saath dene, Bobo Shukriya. Not forgetting all the chori chori, chupke chupke listeners, all the silent listeners, Bobo Shukriya. Aapka bhi, kyunki maine zaruri kaam karna hai, kyunki maine yahan pe maghrib ki azan pesh karni hai Bradford, UK mein. Apni apni maqami time table dekh ke sun ke apni namaz ada karenge, aur kyunki system mein yahan pe computer mein show nahi ho rahi hai, to koi baat nahi, main hu na aur main khud yahan pe pesh karunga. और यहाँ पे क्योंकि आपको पता है कि सिस्टम के बारे में थोड़ी सी समझ आ गई है, और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, थैंक यू वेरी मच. क्योंकि जो हमारे जो कंप्यूटर जी है ना, ये हमारे साथ आज मस्ती मौज में है, तो चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे हमने करना है बहुत ही ज़रूरी है, वो है अजान ब्रेक, और यहाँ पे इन ब्रैडफोर्ड यूके में बड़े अदब अदार से बड़े प्यार के साथ.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

Alright, and that was a wonderful tune out of Avenue Enjoy. One of my all-time favorite tune. Moving on to another beautiful track. This track will take me to the 9 o'clock news. And thank you very much, all those beautiful, beautiful, beautiful callers. और जिन्होंने मुझे फोन किया और फ्लश की है और बुजिन किया है बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी थैंक यू वेरी मच कि आपने हमारा साथ दे रहे हैं और नो फॉरगेटिंग ऑल द चोरी चोरी चुपके चुपके लिसनर्स वाल और उनका भी शुक्रगुजार हूँ ममनून उनका भी और नॉट फॉरगेटिंग जो मेरे साथी हैं वो प्रोग्राम सुन रहे हैं मुझे खबर मिली है कौन कौन हमारा प्रोग्राम सुन रहा है और कौन कौन प्रोग्राम सुनता है और ये खास खास गीत होगा आपके लिए ठीक है आप ही क्या याद करेंगे थैंक यू वेरी मच एंड यू नो मी यू मेड माई इवनिंग टुडे एज़ वेल कि आप मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं और हमेशा ही सुनते हैं और आज भी सुन रहे हैं और आज पकड़ गए ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया आपका थैंक यू वेरी मच

0: Right, वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, जिन दोस्तों मेरा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग द वैल्युएबल टाइम आउट फॉर मी। और दैट वाज द हिट ऑफ द आवर, आपने एंजॉय किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपके लिए था और आपने एंजॉय किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और यहाँ भी हमने करना है टाइम चेक।
1: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
0: Well, the time in the studio is 9 minutes past the 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked in and keep it locked down. यहाँ पे लाइव कॉल का सिलसिला होगा आपसे लेके 11 o'clock तक। बहुत ही शुक्रिया आपका भी जो हमारे साथ जुड़े हैं, थैंक यू वेरी मच। और यहाँ पे हमने स्टार्ट करना है, शुरू करेंगे, आगाज करेंगे और खूबसूरत एक से बढ़कर एक कूलर हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका।

0: राइट लेडी एंड जेंटलमैन बॉयज एंड गर्ल, और यहाँ पे लाइव कॉल का सिलसिला है और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं वन एंड ओनली वन अतीक साहब, हमारा साथ दे रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम अस्सलाम।
0: कैसे तबीयत है? ठीक ठाक है आपकी?
1: सब अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह।
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह।
1: आप कैसे हैं?
0: अल्हम्दुलिल्लाह पाक शुक्र करम करम मौलाद करम
1: अल्लाह पाक हमेशा सब पे करम रखे।
0: आमीन आमीन।
1: सबसे पहले तो सबको रंगे महफिल के सब चांद और सितारों को सलाम।
0: जी जी।
1: और खूबसूरत जो आपने नगमे सुनाए
0: जी
1: उनके लिए बहुत शुक्रिया
0: जी।
1: आपने बहुत ही खूबसूरत नगमे लगाए।
0: थैंक यू।
1: तो हमेशा की तरह तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इतने अच्छे सॉन्ग सुनाते हैं। तो कोई फरमाइश करने की
0: जरूरत
1: नहीं आती।
0: वाह जी वाह,
1: ये बहुत बड़ी बात है
0: जी।
1: इतने खूबसूरत होते हैं।
0: तो
1: सबसे पहले तो हमारी सखी सहेलियां हैं
0: जी जी,
1: सुमित्रा जी हैं
0: जी,
1: रेखा जी हैं, गिदर भाई हैं
0: जी।
1: सुमित्रा जी और गिदर भाई का भी सॉन्ग लगाया था आपने, बहुत
0: जी
1: अच्छा लगा,
0: बहुत खूबसूरत गीत था, वेरी नाइस।
1: बहुत खूबसूरत गीत उन्होंने सुनाया था और उम्मीद है कि आज भी वो बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग सुनाएंगे
0: जी।
1: और सलीना जी हैं, आसिया जी हैं, रुखाना अफजल हैं और सितारा जी हैं
0: जी,
1: चौधरी फरियाद साहब हैं वो भी आएंगे
0: जी,
1: हमेशा की तरह खूबसूरत शायरी सुनने को मिलेगी।
0: वाह।
1: तो नदीम मंसूर साहब हैं
0: वो हमारा साथ दे रहे हैं, क्या कहने उनकी। वाह।
1: उनके तो बहुत ही तारीफ में कोई हमें अल्फाज नहीं मिलते,
0: अल्फाज नहीं मिलते। वाह जी वाह, क्या कहने, छा गए जी छा गए।
1: उनका बहुत शुक्रिया, उनको बहुत सलाम
0: जी।
1: और पापा जी हैं
0: जी,
1: और शकील जी हैं वो भी आएंगे, लास्ट टाइम उनको
0: जाय नहीं मिली है और उनको हम मदद चाह रहे हैं उनसे, और आज उनको टाइम डबल होगा क्योंकि उनके लिए पिछले हफ्ते भी और आज की हम मुकम्मल करेंगे जो दूरी हुई है, और हमें मलाल भी हुआ, दुख हुआ है कि वो उनको लाइन नहीं मिली है पिछले हफ्ते जी।
1: दो तीन गजलें सुनाएंगे।
0: हाँ अच्छा, चार सुनाएंगे, तीन ही चार सुनाएंगे जी। जी
1: सलीम भाई हैं
0: जी,
1: और मुदस्सर कियानी साहब हैं, अब्दुल कयूम साहब हैं, वो भी बहुत खूबसूरत शायरी और सॉन्ग सुनाते,
0: बहुत खूबसूरत गीत उन्होंने गुनगुनाया था लास्ट वीक में, बड़ा ही प्यारा, बहुत ही खूबसूरत, वेरी नाइस जी।
1: हमेशा ही अच्छे सुनाते हैं वो
0: जी।
1: और शहजाद साहब हैं, और साजिद पहलवान साहब हैं, फिर रहमान साहब हैं
0: जी,
1: महबूब इलाही साहब हैं, उम्मीद है कि वो भी आ जाएंगे
0: जी जी इंशाल्लाह।
1: ताहिर तारिक भट्ट साहब हैं, राणा नबीर साहब हैं, शुक्रान भाई हैं,
0: एहसान
1: भाई हैं, और चौधरी रुखसार साहब हैं, रावजर हुसैन साहब हैं, आसिफ रियाजत साहब हैं, सबको बहुत बहुत सलाम। तो अब शायरी सबके नाम करेंगे। कहते हैं जो नफरतों का जमाल ठहरा वो मोहब्बतों का जवाल ठहरा।

0: को हमारे लब पे सवाल ठहरा, जो हमने सोचा था इश्क होगा फक्त हमारा ख्याल ठहरा।
1: वाह वाह।
0: जो हमने सोचा था इश्क होगा फक्त हमारा ख्याल ठहरा।
1: वाह।
0: वो सुन के चुप है कहानी चुपकी।
1: वाह जी वाह।
0: वो सुन के चुप है कहानी चुपकी, ये हमरा जाओ जलाल ठहरा।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: वो हमसे मिलकर भी मिल न पाए। वो हमसे मिलकर भी मिल न पाए, अजब हमारा विशाल ठहरा। वो हमसे मिलकर भी मिल न पाए, अजब हमारा विशाल ठहरा। वो खुद के जैसा ही दूसरा है।
1: वाह जी वाह, क्या कहने।
0: वो खुद के जैसा ही दूसरा है, वो अपने आप ही मिसाल ठहरा।
1: वाह।
0: ना नींद आवे ना चैन पावे,
1: वाह।
0: अधूरा सपना बबाल ठहरा।
1: वाह।
0: ना नींद आवे ना चैन पावे, अधूरा सपना बबाल ठहरा। जो नफरतों का जमाल ठहरा, वो मोहब्बतों का जवाल ठहरा।
1: वाह।
0: तेरे इर्द गिर्द वो शोर था, मेरी बात बीच में रह गई। मैं ना कह सका ना तू सुन सका, मेरी बात बीच में रह गई।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: मेरे दिल को दर्द से भर गया, मुझे बेयकीन सा कर गया। मेरे दिल को दर्द से भर गया, मुझे बेयकीन सा कर गया।
1: बहुत खूब।
0: तेरी बात बात पे टोकना, मेरी बात बीच में रह गई।
1: वाह।
0: तेरे शहर में मेरे हम सफर, वो दुखों का जम खफीर था। जे रास्ता नहीं मिल सका, मेरी बात बीच में रह गई।
1: बहुत खूब।
0: वो जो ख्वाब थे मेरे सामने, जो शराब थे मेरे सामने, मैं इन्हीं में ऐसे उलझ गया, मेरी बात बीच में रह गई।
1: वाह क्या कहने।
0: अजब एक चुप सी लगी मुझे इसी एक पल के हिसार में।
1: वाह।
0: हुआ जिस घड़ी तेरा सामना, मेरी बात बीच में रह गई।
1: वाह वाह क्या कहने।
0: कहीं बेकिनार थी ख्वाहिशें, कहीं बेशुमार थी उलझने। कहीं आंसुओं का हजूम था, मेरी बात बीच में रह गई।
1: वाह वाह।
0: था जो शोर मेरी सदाओं का, मेरी नीम शब की दुआओं का। हुआ मुल्तफत जो मेरा खुदा, मेरी बात बीच में रह गई।
1: वाह वाह वाह वाह वाह।
0: मेरी जिंदगी में जो लोग थे, मेरे आस पास से उठ गए।
1: वाह।
0: मेरी जिंदगी में जो लोग थे, मेरे आस पास से उठ गए। मैं तो रह गया इन्हें रोकता, मेरी बात बीच में रह गई।
1: क्या कहने।
0: मैं तो रह गया इन्हें रोकता, मेरी बात बीच में रह गई। तेरी बेरुखी के हिसार में, गमे जिंदगी के फिशार में।
1: वाह बहुत खूब।
0: मेरा सारा वक्त निकल गया, मेरी बात बीच में रह गई। तेरे इर्द गिर्द वो शोर था, मेरी बात बीच में रह गई। मैं ना कह सका ना तू सुन सका, मेरी बात बीच में रह गई।
1: आहा क्या कहने। बहुत खूब बहुत खूब। वाह।
0: अब दीद के तलबगार नहीं, मगर यूं ही बस।
1: वाह।
0: एक अदा उसकी याद आए तो रो दिए यूं ही बस। एक अदा उसकी याद आए तो रो दिए यूं ही बस।
1: वाह।
0: दिल ने भी कब कोई तकाजा किया विशाल का फिर।
1: वाह वाह।
0: कुछ ख्वाब से पलकों पे सजा लिए यूं ही बस।
1: वाह।
0: उसने भी पलट कर न कभी हाल दिल पूछा, हमने भी कभी शिकवे बुला दिए यूं ही बस।
1: वाह वाह क्या कहने।
0: वीरान दरीचों से हवा पूछती रही, किसकी सदा पर दिए जलाए यूं ही बस।
1: वाह।
0: अब हिजर भी अपना है ना उम्मीद शहर कोई। रात को सितारों से दिल बहला लिए यूं ही बस।
1: वाह वाह वाह।
0: दरिया भी उतर जाए तो प्यासी रही आंखें। दरिया भी उतर जाए तो प्यासी रही आंखें।
1: वाह।
0: कुछ अश्क थे दामन में सजा लिए यूं ही बस।
1: वाह क्या कहने।
0: तेरा गम नहीं काफी हमारा दिल जलाने को। नए कुछ रोग पालेंगे पुराने दुख बुलाने के।
1: वाह क्या कहने। बहुत खूब।
0: ये दिन अपना गुजरता है, उठाए बोझ फुरकत का।
1: वाह।
0: चली आई है फिर यादें हमें शब्बर जगाने को।
1: वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
0: तुम्हारे नक्शगर हाथों में सारे रंग कच्चे हैं। कहो तो हम चले आए लहू अपना मिलाने को।
1: बहुत खूब।
0: हुए हैं दाखिल जंदान, मगर तुमसे नहीं गाफिल। हुए हैं दाखिले जंदान, मगर तुमसे नहीं गाफिल।
1: वाह।
0: सभा को हम

0: क्या है तुम्हारा हाल लाने को।
1: बहुत खूब बहुत खूब।
0: तमाशा हो अगर तकदीर का तब दिल दहलता है। तमाशा हो अगर तकदीर का तब दिल बहलता है।
1: वाह।
0: उतर आते हैं तारे भी मेरी राहें सजाने को।
1: बहुत खूब।
0: तुम्हारा गम नहीं काफी हमारा दिल जलाने को।
1: वाह।
0: नए कुछ लोग बालेंगे पुराना दुख बुलाने को।
1: बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बहुत खूबसूरत शायरी की है। बहुत बहुत शुक्रिया का आपने टाइम भी दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत शुक्रिया। रब रखा। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। दैट वॉज अतीका साहिबा। बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी और हमें अच्छा लगा आप भी हमारा साथ दे रहे हैं और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं। नदीम मंसूर साहब हमारा साथ। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: हजूर कैसी तबीयत आपकी?
2: आपकी दुआएं अल्लाह पाक का शुक्र करम। अल्लाह पाक का
1: करम करम करम मौला का करम होना ही चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कहने जी। और आपने मौसम को एंजॉय कर रहे हैं?
2: जी
1: जी। और हम भी एंजॉय करें फ्री में। क्या विटामिन क्या है फ्री में?
2: बिल्कुल बेशक बेशक।
1: कोई जरूरत नहीं खर्चा करने की। 1,000 पाउंड 2,000 पाउंड डरने की कोई जरूरत नहीं।
2: क्या
1: यहाँ और आज हमारे लिए क्या लेके आए माशाल्लाह?
2: अच्छा एक गीत है वो है मोहम्मद अजीज महूम साहब का।
1: माशाल्लाह जी।
2: वो मैं अक्सर गाया करता था। वो मैंने कहा आपकी नजरों से आपकी नजर कर दूं।
1: हाय हाय हाय क्या कहने क्या कहने।
2: उसमें ये है कि दुनिया में कितना गम है।
1: हाँ मेरा गम कितना कम है। आई हाय हाय मेरा फेवरेट गीत है। क्या कहने क्या कहने। वाह
2: लोगों का गम
1: देखा तो मैं अपना रंग भूल गया। आई हाय हाय हाय हाय हाय क्या कहने। ये मूवी भी आपने मूवी देखी होगी और ये जब मूवी देखे ना तो पता लगता है कि ये मूवी जब भी आपको मिले जब भी आपको देखें उस मूवी को पता लगता है कि अपने कौन है और पराए कौन है। और ये वो स्टोरी है और उस स्टोरी ये पुरानी फिल्म है बड़ी पुरानी फिल्म है अमृत मूवी का नाम है और बड़ी खूबसूरत और शानदार एक्टिंग है राजेश खन्ना साहब की है और क्या कहेंगे रेस्ट इन पीस और स्मिता पटेल रेस्ट इन पीस एज वेल और उनकी एक्टिंग और उनकी शानदार फिल्म ब्यूटीफुल। क्या कहने जी गो अहेड। वाह क्या कहने।
2: चलो ये आपके लिए थोड़ा सा अपनी नजर
1: जी।
2: दुनिया में
1: हाय हाय हाय
2: कितना गम है।
1: हाय
2: मेरा गम कितना कम है।
1: हाय हाय हाय।

0: लोगों का गम देखा तो
1: हाय हाय हाय हाय
0: मैं अपना गम भूल गया

कोई एक हजारों में शायद ही खुश होता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। हूँ घर घर में ये मातम है।

0: बहुत बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, और क्या गीत आपने गुनगुनाया, और वेरी ब्यूटीफुली सॉन्ग, वेरी वेरी वेरी वेरी नाइस, और क्या कहेंगे इसके गाने में, और आपकी आवाज़ खूबसूरत आवाज ब्यूटीफुल, जो भी गज़ल नज़म गाना गाएं, शेर शायरी करें और या जो भी करें, कमाल करते हैं मेरे भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह का करिए, सब अल्लाह का करम है। और आपको पता है ना कि क्या हो रहा है, अब कितने महीने रह गए, 5 महीने रह गए, कितने महीने रह गए,
1: इंशाल्लाह
0: 5-6 महीने रह गए, बाकी वो इशारा ही काफी है, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए और दुआ में याद रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह पाक हमेशा खुश रखे, शादाबाद रखे, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। वाह क्या कहने जी, क्या कहने, और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी, और हमें अच्छा लगा आप हमारा साथ दे रहे हैं, और यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे, जल्दी जल्दी करेंगे, क्योंकि हमारा साथ खूबसूरत कॉलर ने, बहुत ही खूबसूरत।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.
3: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
4: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
5: We're not having that, are we?
4: No. Oi, hear that? It's water and cans.
6: And fix those drips and drops.
7: And take shorter showers, yeah? Because when we work together,
8: it all adds up.
7: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
2: Sunrise and music. Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.
9: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self. 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event. All are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
0: तो राइट, वेलकम बैक, लिस्टिंग 103.2 FM, और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे राना नबी साहब हैं, और वेलकम कहेंगे, जी कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, काफ़ी टाइम के हॉल पे हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
10: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: आज कैसी तबीयत, आप ठीक ठाक, सही ठीक है आपकी?
10: जितनी इमरजेंसी में आप मुझे ले आए हैं, मुझे लगता नहीं मैं ICU का पेशेंट लग रहा हूँ मैं।
0: नहीं नहीं, कोई मसला, जो भी आपने शायरी करनी, जो भी गाना गुनगुनाना है, आप गुनगुना दें और शायरी करनी कर दें, कोई मसला, क्योंकि आपने सुबह काम भी जाना होता है, तो जी गो हेड।
10: जी बड़ी मेहरबानी, आपका शो माशाल्लाह बहुत मसरूफ।
0: जी माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
10: सारे अहबाब को मेरा सलाम
0: जी,
10: तमाम दोस्तों को
0: जी,
10: अभी नदीम मंसूर साहब आए, अयूब चौहान साहब हैं, फराज साहब हैं
0: जी,
10: और तमाम दोस्तों को
0: जी,
10: बहुत ही खूब महफिल
0: जी।
10: तो एक गीत है खान साहब, मेहंदी हसन खान साहब का,
0: हाय हाय हाय हाय, क्या कहने जी,
10: गजल नुमा
0: गजल गजल गजल गजल जी,
10: कहते हैं ये कागजी फूल जैसे चेहरे
0: हाय हाय हाय हाय
10: मजाक उड़ाते हैं आदमी का।
0: वाह क्या कहने,
10: इन्हें कोई काश ये बता दे
0: वाह
10: मकाम ऊंचा है सादगी का।
0: वाह
10: ये सहने गुलशन में जब गए
0: वाह
10: बहार ही लूटने गए
0: वाह वाह वाह वाह
10: जहां गए हैं ये दो दिलों का
0: वाह
10: करार ही लूटने गए
0: वाह
10: ये दिल दुखाना है
0: हाय हाय हाय हाय
10: है सास कब किसी का ये कागजी फूल जैसे चेहरे।
0: वाह क्या कहने क्या कहने मेरे
10: मैं चले अभी इस पे इत्तफाक करता हूँ, आइंदा आपके लिए उठा रखूंगा और आपके लिए कुछ चंद अशार।
0: जी जी अरशाद अरशाद अरशाद अरशाद जी जी
10: क्योंकि आपकी महफिल बड़ी कीमती है तो मेरे जैसे
0: हाय हाय हाय हाय सदके जावां और मैं शुक्रिया अदा करता हूं हमारे गिदन भाई हैं हमारे पापा जी सुमित्रा जी हैं उनका मैं शुक्रगुजार हूं ममनून उनका जी।
10: अच्छा जिन्होंने ये गीत सुन रखा है ना जी उन्हें
0: जी।
10: समझ आ गई होगी।
0: हाय हाय बड़ा ही खूबसूरत बड़ा ही नया आपकी भी वाह जी।
10: तो किरदार मुख्तसर था
0: वाह
10: कहानी में हम भी थे।
0: हाय हाय हाय क्या कहने,
10: किरदार मुख्तसर था
0: वाह
10: कहानी में हम भी थे
0: वाह
10: दो चार दिन तो किस्साए फानी में हम भी थे
0: हाय हाय हाय क्या कहने।
10: देखें ये शायद पहले कही गई हो लेकिन मैं जैसे बयान कर रहा हूँ ना।
0: नहीं नहीं बहुत खूबसूरत आपका एक अपना अंदाज है बड़ा प्यारा अंदाज है जी। जी
10: देखें अंदाज ही अंदाजे
0: बयान है खूबसूरती
10: बात बदल देता है ना
0: बात बदल देता है क्या कहने।
10: किरदार मुख्तसर था कहानी में हम भी थे दो चार दिन तो किस्साए फानी में
0: हम भी थे हाय हाय हाय हाय हाय हाय वाह
10: हर शख्स हमसे खुश रहे मुमकिन नहीं है ये
0: आहा क्या कहने।
10: डूबों डूबों को ये गिला है कि पानी में हम भी थे
0: हाय हाय हाय क्या कहने बहुत खूब।
10: परवेज भाई
0: जी जी
10: आप तेजी में ना सुने थे प्यार से सुने यार
0: प्यार से सुने कर। जी जी
10: राय बनाने वाले जरा रफ्तगां से सोच
0: वाह
10: राय बनाने वाले जरा रफ्तगां से पूछ
0: वाह
10: कुछ आईनों का ख्वाब जवानी में हम भी थे
0: बहुत खूब
10: हाय हाय
0: बहुत
10: और फिर जिंदगी ने दफातन मतला बदल दिया पहले पहल तो मिसराए सानी में हम भी थे
0: वाह
10: मिसराए सानी में हम भी थे
0: बहुत खूब
10: और दीवार पर लगा के हटाई भी उसने खुद तस्वीर थी पुरानी में हम भी थे
0: आई हाय हाय क्या कहने क्या कहने मेरे भाई क्या कहने।
10: लगता है लिख के भूल गया है हमें कलम
0: वाह
10: कोई उसे बताए कहानी में
0: हम भी थे हाय हाय हाय बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत
10: ये बात और है कि वो मशहूर हो गया
0: हाय हाय
10: ये बात और है
0: कोई मशहूर हो गया
10: वो मशहूर हो गया मजनू के साथ दश्त मकानी में हम भी थे
0: बहुत खूब वाह वाह वाह
10: और परवेज भाई के किस मुंह से अब जमाने को अबरक बुरा कहें
0: वाह
10: किस मुंह से अब जमाने को अबरक बुरा कहें
0: वाह
10: अपने खिलाफ शोला बयानी में हम भी थे
0: वाह बहुत खूब
10: और सुनिए आपकी नजर खास
0: जी जी
10: अभी इस तरफ ना निगाह कर मैं गजल की पलकें सवार लूं
0: वाह बहुत खूब
10: मेरा लफ्ज लफ्ज हो आईना तुझे आईने में उतार
0: लूं
10: वाह आपकी नजर ये खास परवेज आपके लिए
0: बहुत
10: सुने
0: जी जी जी
10: अभी इस तरफ ना निगाह कर
0: जी
10: मैं गजल की पलकें सवार लूं
0: बहुत खूब
10: मेरा लफ्ज हो आईना, तुझे आईने में उतार
0: उतार दूं। ओए होए होए, बहुत
10: मैं तमाम शब्द का थका हुआ, तू तमाम शब्द का जगा
0: हुआ। वाह,
10: जरा ठहर जाए इसी मोड़ पर, तेरे शाम तेरे साथ शाम गुजार।
0: बहुत खूब बहुत खूब।
10: अगर आसमां की नुमाइशों में मुझे भी इज़्ने क़याम हो, तो मैं मोतियों की दुकान से तेरी बालियां तेरे हाथ।
0: क्या तू, हाय हाय हाय हाय हाय।
10: तो मैं मोतियों की दुकान से
0: वाह
10: तेरी बालियां तेरे हार लूं।
0: वाह,
10: कई अजनबी तेरे शहर के, ये आपकी नजर है।
0: बहुत खुश, बहुत खुश, थैंक यू
10: साहब
0: जी जी।
10: कई अजनबी तेरे शहर के मेरे पास से यूं गुजर गए,
0: बहुत खूब,
10: जिन्हें देखकर ये तड़प हुई तेरा नाम लेकर पुकार लूं।
0: बहुत शुक्रिया, वाह बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बड़ी मेहरबानी।
10: उम्मीद है बात
0: आपने मैंने क्या क्या कहने आपको, डॉक्टर साहब आपका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, अली भाई हमारे शबरेज भाई हैं वो शुक्रिया अदा करें, वो फ्लश हमें कर रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने हमें टाइम दिया।
10: नहीं
0: नहीं कोई कोई कोई बात नहीं मेरे भाई, बहुत आप अपने हैं, बहुत अच्छा लगा, अपना ख्याल रखें और दुआ में याद रखें, बहुत शुक्रिया मेरे भाई।
10: मेरा अंदाज पसंद आया,
0: बड़ा खूबसूरत अंदाज, बड़ा ब्यूटीफुल अंदाज, वेरी नाइस ब्यूटीफुल, और शुक्रिया अदा करता हूँ मैं आपका, शुक्रिया शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। वाह, ये थे हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त, जितनी भी मैं तारीफ करूँ कम है, और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हमारे मोहतरम, हमारे दिल अजीज है, बहुत प्यार करने वाले हैं, और आजकल छाए हुए हैं, पूरी दुनिया में छाए हुए हैं, ये हैं हमारे गुरुजी हैं, गिदन भाई हैं, हमारी भाभी जान हैं, ओए होए होए, सदके जावां, इन्होंने जो गज़ल गुनगुनाई थी लास्ट वीक में, आज भी गूंज रही है हमारे इस्मातों में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं ठीक ठाक फर्स्ट क्लास हूँ, और आपका इंतजार में था कि आप आएंगे, और आपने जो गजल सुनाई है आज मैंने पेश की है, और सब ने शुक्रिया अदा किया, फर्दन फर्दन आपने शुक्रिया अदा किया, तिकर साहब ने शुक्रिया अदा किया आपका, और सिमी जी ने शुक्रिया अदा किया, मिस्टर मिस्टर पटेल ने शुक्रिया अदा किया, बड़ा ही खूबसूरत अंदाज, बड़ा प्यारा।
8: सबका बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
8: तो अतिका जी हमारे नंबर 1 पे आ गए।
0: हाय हाय, क्या कहने जी,
8: हमारा शकील भाई को पता नहीं क्या हुआ, लास्ट वीक भी नहीं
0: आया। नहीं नहीं, शकील साहब को लाइन नहीं मिली थी, उन्होंने मुझे फोन किया था, उन्होंने फोन किया, उन्होंने कहा कि लाइन नहीं मिल रही है, तो बिजी थे, लाइन बिजी,
8: और लाइन की तार है ना थोड़ी बड़ी रखी,
0: बड़ी रखे, आए, आए, आए, आए, आए। और आज आएंगे, आज आएंगे इंशाल्लाह आएंगे। देखो उनकी मैं एक एक खूबसूरती उनकी है, बिलीव करें कि चंद ऐसे दोस्त हैं हमारे माशाल्लाह, और जैसे आप भी हैं माशाल्लाह, कभी लाइन किसी को ना मिले ना, तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, हमें खुशी होती है कि आपका प्रोग्राम बिजी है, तो कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में दोबारा कुछ
8: उसको तो खुशी है, लेकिन हमें मजे नहीं आते।
0: नहीं नहीं, वही वही बात, कई दफ़ा हो जाता है, कई दफ़ा देखो ये खूबसूरती होती है, आप दोस्तों का प्यार है, प्रोग्राम में सब शिरकत करते करते हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है, और आप ही अपने हैं, वो भी अपने हैं, और वो मेरा आपको पता है मुर्शिद है मेरे, आपको पता है ना,
8: सही बात है,
0: आप गुरु हैं, आप गुरु हैं, वो मेरा मुर्शिद है।
8: तो हमारा सतीन भाई को बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम अस्सलाम।
8: जावेद भाई है हमारा
0: जी,
8: मोहम्मद हनीफ भाई है, साजिद भाई है
0: जी,
8: हमारा और उस्ताद चौधरी फरियाद भाई
0: है,
8: जो आपका लाडला हो,
0: मेरा लाडला है, और आज उसको लाइन नहीं मिली है, पता नहीं खैरी खैर है, उसको लाइन नहीं मिल रही आज, तार लंबी करनी पड़ेगी, हम आपके घर से लेके आएंगे तार को। आपके घर से आएगी जी।
8: वाजिद भाई है हमारा, सजाद पहलवान है, इकबाल भाई है, बाबा सतीक है, डॉक्टर मलिक साहब है, हमारा रफी साहब है, फिर हमारा परवेज खान भाई है,
0: क्या कहने,
8: बेना समीना खान है
0: जी,
8: तो उसके बाद हमारी आशिया जी है, अतिका जी है, सलीना जी
0: जी,
8: असिमे जी, रेखा जी, हमिदा जी, सुतारा जी
0: जी,
8: पटेल सब, तो हमारा बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम सलाम।
8: तो ये मैं छोटा सा मैं गाना क्या लेता हूँ
0: जी जी, गो अहेड।

0: अपनी अपनी मंजिल से मिले, इस घूंघट में एक बदली में, एक रात में दो दो चांद खिले। बदली का वो चांद तो सबका है, घूंघट
1: वाह वाह
0: का वो चांद तो अपना है।
1: वाह
0: बदली का वो चांद तो सबका है, घूंघट का वो चांद तो अपना है। मुझे चांद समझने वाले बता, ये सच है या सपना है, ये सच है या
1: वाह
0: सपना है। एक रात में दो दो चांद खिले, एक घूंघट में एक बदली में, अपनी अपनी मंजिल से मिले। एक
1: वाह
0: घूंघट में एक बदली में, एक चांद रात में दो दो चांद खिले। मालूम

0: एक राख में दो दो चांद किले, एक घूंघट में एक बदली में, अपनी अपनी मंजिल से मिले। एक घूंघट में एक बदली में, एक रात में दो दो चांद किले। थैंक यू।
1: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, क्या कहने मुकेश का आपको गीत है, और बहुत खूबसूरत आपकी आवाज़, बड़ी प्यारी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। और ये आपके लिए कमाल कर दिया, और मैं बड़े दिनों के बाद ये मैंने गाना सुना, और वो भी आपकी आवाज़ में, समथिंग डिफरेंट, समथिंग यूनिक। बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। और हमारी भाभी जान कौन सा गीत लेके आई आ रही है। हेलो भाभी जान, हाउ आर यू गुड? माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारा साथ देने, थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला। नहीं नहीं नहीं, वो नेक्स्ट आवर में होगी इंशाल्लाह जल्द। बहुत बहुत शुक्रिया कि अभी पे हमने तो जो मगरिब की अजान पेश कर दी है, और लास्ट और वहाँ पे अजान होगी है, जो ईशा की अजान होगी वो नेक्स्ट आवर में होगी जी। बहुत अच्छा लगा, देखो ये अभी आपने अच्छा किया माशाल्लाह, और बहुत अच्छा लगा माशाल्लाह। नौ से पहले पहले हमने वो एक अजान पेश कर दी माशाल्लाह, बहुत अच्छा। देखो ये आपके अंदर इतनी खूबसूरती है, देखो आप मेरा ख्याल रखती हो, देखो बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। और स्पेशली ये मैं आपके लिए, वाह वाह वाह, देखो ये होती है खूबसूरती होती है, देखो हाँ माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ पे आर्ट ब्रेक आ चुकी है, और आपने थोड़ी जी होल्ड करेंगे आर्ट ब्रेक के लिए, फिर मैं आपको लेके वापस आऊँगा, ठीक है? आपने माइंड नहीं करना, बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि थोड़ा टाइम लेट हो जाएंगे, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। ओए होए, क्या कहने।
2: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: Time in the studio is 46 minutes past 9 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on and keep it locked on with the Pabij Khan. Yeah, we'll take a break. Break for and by the way, our Smitra Ji, our Pabij Khan. Look how beautiful they have talked. Look how beautiful they have talked. And they have thought about us, they are thinking about us, and they are thinking about us. And look how good they are, mashallah. How beautiful their eyes are, their love is. And they have asked us, पूछा भी है, हमने इनको बता भी दिया। और देखो ये होती है खूबसूरत, जब मैं कहता हूँ ना, ये मेरे अपने हैं, ये मेरे सज्जन हैं, और ये सज्जन की इन्होंने सबूत हमें दिया है, और यू नो व्हाट, गॉड ब्लेस देम, बोथ देम, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया।
3: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
4: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
5: We're not having that, are we?
4: No. Oi, hear that? It's water and cans.
6: And fix those drips and drops.
7: And take shorter showers, yeah?
8: Because when we work together,
9: it all adds up.
10: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
11: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
12: गलियां गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
13: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
12: चाचा केड़ा चाचा?
13: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी नकन तीला सिर्फ 2 पौंड ना कनस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
12: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
13: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
14: Classic hit of the hour brought to you by Sunrise Radio Gold, taking you down memory lane with non-stop classic hits from 50s to the 90s. SunriseRadioGold.com.
15: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane, where were you when you first heard this?
1: राइट, वेलकम बैक लिखने योर लिखने रेडियो 103.2 एफएम। और यहाँ पे माला साथ दे रहे हैं हमारे पापी जाने सुमित्रा जी हैं, वेलकम कहेंगे, जी हैं कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, और साथ बिस्मिल्लाह कहेंगे उनके लिए। ये और यहां पे बाबी जान, यू नो व्हाट, यू मेड मी प्राउड टुडे, माशाल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपने मुझे मेरा दिन जो ना शाम वक्त जो शाम का वक्त है मुझे आपने बना दिया है, एंड थैंक यू वेरी मच, आई रियली रियली अप्रिशिएट, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी जी, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, क्योंकि वो टाइमिंग चेंज हो रहा है ना, वो थोड़ा सा पीछे पीछे हो रहा
9: है
1: जी जी जी जी, क्योंकि अभी जो आपको पता है अजान के जो टाइमिंग है ना वो पीछे पीछे हर रोज पीछे जा रही है, तो इसलिए फिर जो है ना वो पीछे जा रही है जी जी।
9: तो सबको सलाम बोल दो
1: जी जी, गो अहेड।
9: कोई बोलने वाला है
1: जी,
9: अमर भैया है, सलमान है
1: जी,
9: भैया है
1: जी,
9: चौधरी भैया भैया है
1: जी,
9: फिर इकबाल भैया
1: जी,
9: पापा ठीक भैया, डॉक्टर मलिक साहब है, मुफ्ती भैया है,
1: अब्दुल कयूम साहब जी जी, अब्दुल कयूम साहब हैं और मोहम्मद रफी साहब हमारे साथ हैं जी, जी जी
9: ये तो आएगा,
1: नहीं नहीं हमारा साथ है, मोहम्मद रफी साहब हमारा साथ, मेरा प्रोग्राम है वो ना है, आया कैसे हो सकता है, वो हमारा साथ है जी जी जी,
9: माशाल्लाह
1: सिमी जी जी सिमी जी जी जी जी,
9: फिर
1: जी
9: है
1: जी,
9: जी है, जी
1: रेखा जी,
9: सीता जी, जितने लोग आते हैं सबको मेरा सलाम,
1: वालेकुम
9: सलाम
1: जी, सलाम आपको, वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू,
9: ये तो मेरा रिपीट को गाएगा ना
1: जी जी जी जी, गो हेड गो हेड,
9: आपकी नजरों,
1: हाय हाय क्या कहने,
9: प्यार के काबिल ये धड़कन सहलता, मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों, क्या हमें दूर आप पैसा आप कह रही है, हर नजर बंदा पर शुक्रिया, अपने जिंदगी कर लिया शामिल मुझे आपकी नजरों, आपकी मंजिल मेरी, आपकी मंजिल मेरी, आप क्यों मैं तूफान से डरूं, मेरा साहिल आप है, कोई तूफ़ा साहिल मुझे दिल के कर मिल गई मुझे आप नजरों, समझ पड़ गई दिल पर आपकी परछाई, पड़ गई दिल पर आपकी परछाई, बजने लगी एक रोशनी दुआ, दो जहां की आज दुनिया हो गई हासिल मुझे, जिसकी धड़कन सहलता, मिल गई मंजिल मुझे आपकी नजरों, प्यार के काबिल मुझे दिल की धड़कन सहलता, मुझे आपकी नजरों,
1: ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, कितना खूबसूरत आपने गीत गुनगुनाया, मेरा फेवरेट गीत आपने गुनगुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। और क्या गीत जी जी, वालेकुम अस्सलाम। और गीत का आपने जो चुना, ये जो बहुत ही मशहूर मकबूल गीत है और बड़ा ही शानदार गीत, बड़ा ही प्यारा गीत है, बड़ा अच्छा लगा जी।
9: फिल्म भी बहुत अच्छी थी,
1: बहुत खूबसूरत मूवी है, और आपकी जो यादगारी है और जो आपकी जो चॉइस की म्यूजिक है बहुत ही कमाल की है, बड़ी खूबसूरत, वेरी नाइस, ब्यूटीफुल, बहुत बहुत शुक्रिया। और ये वो गीत था जी।

0: That was a wonderful tune, Boba Shukriya. और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम, हमारे भाई, हमारे दोस्त. और पाँच मिनट रह गए, पाँच मिनट में क्या होगा, क्या होगा मुझे ये बताएं कि क्या होगा. और हमारा साथ दे रहे हैं यहाँ पे, उनको हम वेलकम कहेंगे, जी कहेंगे, खुश आमदीद कहेंगे, और उसके बाद हम नेक्स्ट आवर में लेके आएंगे उनको. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू.
1: वालेकुम अस्सलाम.
0: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, आप आ गए और छा गए और दुनिया वाले खुश होंगे और आप हमारा साथ दे रहे हैं, उनको खबर मिल गई है.
1: आपका भी शुक्रिया, दुनिया वालों का भी बेहद शुक्रिया.
0: हाय हाय, बड़े दूर से आए हैं और क्या है प्यार, और बड़ा ही अच्छा लगा कि आप हमारा साथ दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया सर. और थोड़ी देर के बाद
1: जी आप और हम ना साथ.
0: हाय हाय हाय हाय हाय हाय, खुश किता है, खुश किता है, क्या कहने. हाय हाय हाय हाय, क्या खा गई, मजा आ गया जी, और बहुत अच्छा लगा. और कैसी तबीयत आपकी, ठीक ठाक? ठीक है आपकी?
1: मैं बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ.
0: आपने मौसम का एंजॉय किया आज?
1: बहुत मौसम का एंजॉय किया. बड़ी गर्मी थी,
0: बहुत गर्मी थी, बड़ी गर्मी थी माशाल्लाह. और बहुत ही शुक्रिया कि आपने फिर भी हमारा साथ दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर, बहुत अच्छा लगा. और आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे क्योंकि अभी थोड़ी देर के बाद न्यूज ब्रेक आ रही है, तो उसके बाद आप थोड़ा सा होल्ड कर लेंगे. बहुत बहुत शुक्रिया. हम देखते हैं कि थोड़ी देर के बाद न्यूज ब्रेक भी आएगी और उसके बाद हमने एट ऑफ द आवर पेश करेंगे, तो थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, तो आपने माइंड नहीं करना, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया.
1: नो नॉट एट ऑल,
0: थोड़ा सा टाइम हो जाएगा, ठीक है? बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू. वाओ, ये है मेरे अपने हैं और अपनों की बात हो रही है यहाँ पे. और यहाँ भी हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहतरम में हैं, हमारे भाई हैं, हमारे दोस्त हैं, और अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखे, शादबाद रखे. और ये भी आगे हैं माशाल्लाह हमारे हमारे उस्ताद हैं. बिलीव करें कि उस्तादों की हमेशा ही इंतज़ार में होता हूँ कि उस्ताद आएँगे और माशाल्लाह, और थोड़ी देर के बाद उनसे भी हम कलाम होंगे और उनसे भी यहाँ पर बात करेंगे, क्योंकि उनके भी चाहने वालों को पता लगे ना कि वो आगे हैं. और यहाँ अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जी हजूर, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. हजूर कैसे तबीयत आपकी?
2: बस आपकी
0: दुआओं और माशाल्लाह. बहुत अच्छा लगा कि आपने हमारा साथ दे रहे हैं. और आप थोड़ा सा होल्ड करेंगे तो मैं आपको फिर नेक्स्ट आवर में लेके आऊंगा थोड़ी देर के बाद, ठीक है ना? बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए और मुझे बहुत खुशी हुई है कि आप आए माशाल्लाह. बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर, शुक्रिया. वाओ, ये होती है जो मेरे अपने हैं, मेरे सज्जन हैं, और सज्जन आ रहे हैं माशाल्लाह. एक और मेरे सज्जन हैं, वो कोशिश कर रहे हैं फ़ोन करने की. इश्वाक रसूल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. काश यहाँ पे, क्या करें मैं, क्या करूं, और काश काश काश काश. और इश्वाक रसूल जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप कोशिश कर रहे हैं फ़ोन करने की. और थोड़ी देर के बाद आपसे भी हम कलाम होगा और नेक्स्ट आवर में. और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर के आप भी हमारा साथ दे रहे हैं. गंजफर खलास जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, आप भी हमारा साथ दे रहे हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. गीता जी, आप पिछले पाँच हफ्तों से हमें याद कर रही हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. शकीर साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. अब्दुल कयूम साहब हैं, कुरान भाई हैं, मुदस्सर कियानी साहब हैं, एफ रहमान साहब हैं, राय अजहर हुसैन साहब हैं, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन सिमी जी हैं. बहुत बहुत शुक्रिया आप सब दोस्तों का, और किसी का मैं नाम भूल गया, मैं डू अपोलोजाइज. आसिफ रियासी साहब हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. तौकीर शाह जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच. और अच्छा लगा कि आप भी हमारा साथ दे रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी. और थैंक यू वेरी मच कि देखते हैं कि दुनिया में क्या हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है. और यहाँ पर हमने क्या करना है कि छोटी सी ब्रेक करेंगे और न्यूज़ ब्रेक होगी, और अल्लाह हैरी करे, हम दुआ गोएं सबके लिए, सबके लिए दुआ गोएं. चौधरी इफ्तार भाई और मदरसे के अनुसार, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच. यहाँ में न्यूज़ ब्रेक करेंगे. कीप इट लॉक्ड विद सनराइज रेडियो 103.2 एफएम.
3: Broadcasting to the Asian community 24 hours a day, this is Sunrise Radio. On the hour, every hour, this is Sunrise Radio Network News.
4: From the Sky News Centre at 10. Millions of people across the country saw the clearest solar eclipse in nearly 30 years. Shops sold out of special protective glasses as stargazers headed to parks and beaches to see 90% of the sun covered by the moon. We won't see anything like this here until at least 2090. Dr. Kelly Korek is NASA's Eclipse Program Manager. She says as well as being enjoyable, it'll provide vital scientific data.
5: We're going to be able to understand our space weather, especially with our Artemis crews going up, as well as protecting our technological way of life here on Earth. So all those studies will be compiled and then released in various scientific papers and then eventually used in operations.
4: The Prime Minister's urged all retailers to stop selling single-use barbecues to try to prevent more wildfires. More than 1,000 have been reported in England and Wales already this year. That's around the total for the whole of 2025. Crews battling seven fires in South Wales describe it as carnage, while another's burning underground at a Cambridgeshire nature reserve. Dave Swallows from the National Fire Chiefs Council.
6: The majority of wildfires in the UK are caused by some kind of human interaction. There's very few sort of natural wildfires. So in some parts of the world you see lightning, for example, or start a wildfire. We don't really see that very much in the UK.
4: A double murderer and rapist beginning a whole life term in prison. 40-year-old Simon Levy was able to commit his crimes in London last year while out on bail. The White House Press Secretary Caroline Levitt's leaving her role at the end of the month. She announced the birth of her second child in May. Organisers of the Eurovision Song Contest have changed the rules for 2027. Next year's winner will be banned from hosting if they're involved in armed conflict. A Porsche driver has died in a crash with a tractor on the A41 in Shropshire. A man's been arrested. And Barcelona great Xavi's been named as the new manager of the Netherlands. He'll lead the Dutch through to the 2030 World Cup. That's the latest. I'm Stevie Schillinglaw.
3: Sunrise Radio Network News.
7: Four people have been arrested after police uncovered a suspected drugs laboratory during raids in Leeds. Officers carried out warrants in Adel and Wortley before discovering what they believe was an illicit medication production site on Whitehall Road. Three men and a woman were arrested on suspicion of money laundering and supplying drugs. Nine firearms were also seized at a separate address on Farrer Lane. Detectives say investigations are continuing and are urging the public not to buy illicit medication. A Leeds widower says joining local community groups has transformed his life after years of loneliness. 64-year-old Colin Clark from Middleton turned to charity Health for All following the death of his wife, and later joined a walking group, a men's health group, and eventually the Leeds Male Voice Choir. His story features in Leeds City Council's latest Public Health Annual Report, which highlights the important role community organisations play in improving health and well-being across the city. A drug dealer has been jailed after police uncovered cocaine and cash in Scarborough. 25-year-old Florian Juni, of no fixed address, was sentenced to 29 months in prison after admitting possessing cocaine with intent to supply. Officers arrested him following suspicious activity in the town and later recovered cocaine, cash, and evidence linking him to drug dealing. Police say they will continue targeting those involved in supplying illegal drugs across North Yorkshire. This is Sunrise Radio News with James Hawksworth. A 14-year-old boy is assisting police after a hoax threat involving a flight heading to Manchester Airport. Emergency services, the Royal Air Force and airport authorities responded after a report was made to National Air Traffic Services on last Friday. The aircraft landed safely and police confirmed there was no threat to passengers or crew. Officers say hoax reports are taken extremely seriously because they can cause major disruption and divert emergency resources. That was Sunrise Radio News.

0: राइट वेलकम बैक लिसनर, यू आर लिसनिंग टू रेडियो 103.2 एफएम और यहां पे जल्दी जल्दी करेंगे कुछ टाइम चेक करेंगे यहां पे
1: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time.
0: Well, the time in the studio is 7 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on with the Pavel Khan. Yahan pe chhoti si break karenge, break for and baad yahan pe dekhte hain kya hota hai.
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
3: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
4: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
5: We're not having that, are we?
6: No. Oi, hear that? It's water and cans.
7: And fix those drips and drops.
8: And take shorter showers, yeah?
9: Because when we work together,
10: it all adds up.
11: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
0: Right, welcome back, listener. You're listening to Radio 103.2 FM. और यहाँ पे थोड़ी देर के बाद मैंने यहाँ पे इशा की अजान पेश करनी है ब्रैडफोर्ड यॉर्कशायर में अपने अपने मकामी टाइम देखकर सुन के आपने नमाज अदा करेंगे और मेरे लिए मेरी फैमिली की दुआ करनी है खसूसन दुआ करनी है हमारे वाजिद भाई हैं उनके लिए खसूसन दुआ करनी है और हमारे उस्ताद मोहतरम में एम खान जी हैं उनके लिए खसूसन दुआ करनी है बहुत ही प्यारे हमारे भाई हैं माशाल्लाह और मोहम्मद रफ़ी साहब वो भी हैं और यहाँ पर अजान शो तो नहीं हो रही है कोई बात नहीं यहाँ पर मैं खुद पेश कर लूँगा और क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर मैं बैठा हूँ इसीलिए और मैं हूँ ना और बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी और यहाँ पर क्योंकि अभी एक मिनट रह गया है तो इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी देर के बाद मैंने यहाँ पर कि मैं कोशिश करता हूँ कि टाइम के साथ जो भी काम करता हूँ कोशिश करता हूँ कि टाइम के साथ होनी चाहिए टू द डॉट और ऐसा ही होना चाहिए और यहाँ पर अकाउंट ऑन में कर रहा हूँ और उसके बाद यहाँ पे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन शुक्र उस मौला का और यहाँ पे हमने इशा की अजान पेश करेंगे एंड कीप इट लॉक्ड विद सनराइज रेडियो ऑन 103.2 एफएम और यहाँ पे हमने करना है बड़े अदब आदाब से बड़े प्यार के साथ

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: 5970 Usha 0793-1788-062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
1: Sunrise and music.
2: Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Radio 103.2 FM. और बहुत शुक्रिया सब दोस्तों का. और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे मोहम्मद रफी साहब हैं और बहुत शुक्रिया इनका इनके इंतजार किया. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
3: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू.
2: माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन. बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इंतजार किया.
3: बहुत बहुत
2: जी थैंक यू वेरी मच जी. गो अहेड.
3: और आप ठीक ठाक हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का शुक्र. करम इस मौला दे करम है जी.
3: मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम उन पे लाखों करोड़ों दरूद ओ सलाम. मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम. सभी से जुदा जिसका अंदाज है, फलक ता जमीन जिसकी परवाज है, वही जिन पे हमको नाज है.
2: वाह
3: परवेज खान जी, आप ही की तो वो आवाज.
2: हाय हाय हाय हाय हाय हाय हाय क्या कह रहे. बहुत बहुत शुक्रिया. वाह जी वाह. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच. इस दौर में भी माशाल्लाह. और बहुत अच्छा लगा. बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू वेरी मच.
3: और ये फरमाइशी गीत पेश करता हूँ आपकी खातिर. मुबीन साहिल आमिर अमीर और साहिल
2: जी
3: एंड डॉक्टर बशीर पाशा
2: जी
3: साइम
2: जी
3: गुरु भाई बाबी सेबा माजिद साहिब
2: जी.
3: और स्पेशली ये मैं अपनी ग्रैंड डॉटर के लिए पेश कर रहा हूँ.
2: माशाल्लाह क्या कहने. बहुत जी जी.
3: और मेरी छोटी सी बेबी का नाम है
2: जी
3: आइजल मुअज्जम.
2: हाँ हाँ बहुत खूबसूरत नाम माशाल्लाह. वेरी नाइस.
3: रोशन तुम्हें से दुनिया रौनक हो तुम हमारी फूलों में पलने वाली रानी हो तुम हमारी.
2: वाह वाह वाह.
3: सलामत रहो
2: वाह वाह.
3: सलामत रहो. नाजुक हो नाज से भी तुम प्यार से भी प्यारी. नाजुक हो नाज

नहीं हो धड़कन, धड़कन हो तुम हमारी, सलामत रहो सलामत रहो सलामत रहो। दिल टूट जाए ना ये मेरे पास आके खेलो, दिल टूट जाए ना ये मेरे पास आके

नानने खुदा के आगे सलामत रहो, सलामत रहो, सलामत रहो, रोशन तुम्ही से दुनिया, रौनक हो तुम हमारी, फूलों में पलने वाली रानी हो तुम हमारी, सलामत रहो, सलामत रहो। दुनिया के रखवाले सुन दर्द।

0: वाले सुने दर्द भरे मेरे नाले, ओ दुनिया के रखवाले सुने दर्द भरे मेरे नाले, सुने दर्द भरे मेरे नाले। चांद को ढूंढे पागल सूरज, शाम को ढूंढे सवेरा, मैं भी ढूंढूं उस प्रीतम को, हो न सका जो मेरा। रहमान करम हो तेरा, ओ किस्मत फूटी आस न टूटी, पाँव में पड़ गए छाले, ओ दुनिया के रखवाले। सॉरी आप, मुझे खांसी आने वाली है।
1: कोई कोई कोई बात नहीं, कोई बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।
0: अल्लाह हाफिज,
1: अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। क्या कहने, ये मुश्किल गीत है और इन्हें गुनगुनाया, बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी। और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हमारे मौजूद मेहमान हैं अहम खान जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह।
1: माशाल्लाह,
2: शुक्रिया आपका सुनने व कारवादों का।
1: माशाल्लाह जी,
2: जो पहले एक बात, दो बातें अगर टाइम हो तो।
1: जी जी जी, क्यों नहीं बात करें, क्यों बात करें, जी जी बिस्मिल्लाह करें। कोई कोई मौजूद है, कोई करनी है या वैसे कोई बात करनी है? जी जी,
2: मैं को अपने पंजाबी यानी आर्ट बीती या जग बीती।
1: जी जी जी जी जी जी जी,
2: मैं एक दफा किसी जगह से बाहर निकल रहा था।
1: जी जी जी जी जी जी जी,
2: तो एक शख्स बोला कि मैं अक्सर मुख्तलिफ चैनल टेलीविजन में टेलीफोन करता रहता, एक दफा आपको टेलीफोन किया
1: जी,
2: तो बात जरा उस आदमी की समझ में आ गई। जब बाहर निकला तो कहने लगा, अब मिस्त्री साहब की जुबान बंद कर दो, ये लीडर बन जाएगा।
1: तो नहीं नहीं, ऐसी ऐसी नहीं, ऐसी नहीं, ऐसी नहीं, आप तो बहुत प्यारे हैं माशाल्लाह। और
2: आपको बात सुनाता हूँ ना।
1: जी जी,
2: अच्छा ये लीडर बन जाएगा हमारा क्या होगा। फिर मैं फैक्ट्री में और मीटिंग, मैंने मीटिंग में
1: जी
2: कुछ अल्लाह ने कर फरमाया, अच्छी अंग्रेजी की बोली, तो बोलने के बाद वो जो 12-13 ऑफिसर थे उन्होंने कहा इस आदमी को इस डिपार्टमेंट का चेयरमैन बना दो,
1: चेयरमैन बना दो। वाह जी वाह वाह वाह, क्या कहने।
2: अच्छा, जिस वक्त मैं अपने डिपार्टमेंट पहुंचा, खबर मुझे पहले पहुंच गई
1: जी,
2: मैनेजर मेरे पास गया
1: जी,
2: कहने लगे कुछ सफेद फॉर्म थे वो गए थे, कहने लगे
1: जी
2: ये तो तू चेयरमैन बना दिया, ये कल बोलेगा करी उस बना दो
1: जी,
2: मस्जिद बना दो तो यही करोगे
1: जी।
2: वो कुछ बोला मैनेजर, कहने लगे हम आपसे जो चेयरमैन की यानी कागजी कार्रवाई वापस लेते। मैंने कहा इसकी दरखास्त तो आई को नहीं।
1: अच्छा जी,
2: हमारे आदमियों में जितनी नफरत है एक दूसरे के बारे में, शायद किसी और में अल्लाह इत्यादि तो
1: इत्यादि है। और ये सब एम खान जी, ये सब नहीं है, कुछ लोग होंगे और कुछ शायद होंगे, एक दो होंगे शायद, पूरी दुनिया में बहुत खूबसूरत लोग हैं अच्छे दुनिया में।
2: जी
1: जी,
2: पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहा
1: जी, जी जी
2: वजह से
1: नहीं, नहीं कोई कोई कोई बात, दुनिया में ऐसा होता है। और क्या कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, चलो ऐसा दुनिया में होता है। और चलो
2: सलाम
1: जी जी,
2: अल्लाह मुझे लोग पसंद नहीं करते
1: जी,
2: मेरे इतना कर्म हो जाए लोग पसंद करें
1: जी।
2: आपने इरशाद फरमाया जनाबे मूसा अलैहि सलाम,
1: जी जी
2: मैं रब हूँ, रब रब होने के बावजूद मेरी सारी लोग
1: हाय हाय हाय हाय, क्या, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है जी जी, ऐसे
2: देता हूँ
1: जी जी,
2: इसके बावजूद मुझे लोग पसंद नहीं करते।
1: चलो अल्लाह
2: रब रब हूँ कायनात का,
1: हाय हाय हाय सुभान अल्लाह,
2: कबूल नहीं होती। अच्छा मैं अल्लामा इकबाल का
1: जी जी, अर्शाद अर्शाद अर्शाद जी जी जी जी जी जी,
2: अल्लामा इकबाल
1: जी जी
2: जमाने या उस जमाने
1: जी जी जी जी
2: के लोगों के बारे में जान फरमा
1: जी,
2: वो जायदाना हरारत रही ना सूफी में, बहाना भी अमली का बनी शराबे आलस
3: हाय हाय हाय हाय
2: पकी शहर भी रहबानियत पे है मजबूर के मार के हैं शरीयत के जंगो दस्तों बस रेज कशमकश जिंदगी से मर्दों की अगर शिकस्त नहीं है तो और क्या शिकस्त आगे आजम मियां साहब का एक अपना
1: जी
2: तरीकाकार है मियां साहब इरशाद फरमाते हैं अव्वल हमद
1: माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह
2: माशाल्लाह
1: माशाल्लाह माशाल्लाह क्या कहने
2: जो मालक हर हर दा
1: वाह
2: उस दा नाम
1: वाह
2: चितारन वाला
1: बहुत खूब बहुत खूब
2: हर मैदान ना हर दा काम तमाम मयसर होंदे
1: वाह
2: ओ नाम उदा चित दरिया
1: क्या कहने बहुत खूब
2: रेमू सुके सावे करदा
1: वाह
2: ओ कैरू
1: राड़े
2: हरिया
1: वाह वाह
2: कुदरती जिस बागो बनाए
1: वाह
2: जग संसार तमामी
1: वाह
2: रंग बरंगी बूटे लाए
1: वाह वाह
2: कुछ खासे कुछ आमी
1: वाह
2: एक ना दे फल मिठे कीते
1: वाह
2: ओ पत उना दे कोड़े
1: वाह वाह वाह
2: एक ना दे फल कारी आवन
1: वाह
2: नफे पलां दे थोड़े
1: बहुत खूब
2: इस अजायब बागे अंदर आदम दा रुख लाया
1: वाह
2: मारफत दा मेवा देके
1: वाह वाह
2: फूलदार बनाया
1: वाह क्या कहने
2: बहुत बहुत शुक्रिया जी
1: शादी बहुत बहुत शुक्रिया और आपके लिए खैर मैं माजरत चाह रहा हूँ आपकी बात काट रहा हूँ और आपको सलाम पेश कर रहे हैं हमारे मौजूद मेहमान हैं वो भी हैं आदिल सुहेल अख्तर साहब उन्होंने आपकी तारीफ़ की है और उन्होंने बड़ी ही तारीफ़ की उन्होंने कहा वाह वाह और बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इतनी खूबसूरत बातें करते हैं अच्छी गुफ्तगू करते हैं तो उन्होंने बहुत ही मुतासर हुए माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि उन्होंने
2: जी
1: माशाल्लाह क्या कहने बहुत बहुत शुक्रिया जी बहुत अच्छा लगा और अपना ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें अल्लाह पाक हमेशा को खुश रखे शाद आबाद रखे और बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी और हमें अच्छा लग रहा है और आपके आए और बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी यह हम छोटी सी ब्रेक करेंगे जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि हमारे साथ काफ़ी कॉलर्स जमा हो चुके हैं और टाइम ही कम आ रहा है और यहाँ पर शो हो रहा है और बहुत बहुत शुक्रिया सबका
4: ऋषि's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details call Benny 07901 831 165. Raman 07834177866. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
5: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
6: Hold on, miss. 2055? We'll be grown-ups by then.
7: We're not having that, are we?
6: No. Oi, hear that? It's water and cans.
8: And fix those drips and drops. And take shorter showers, yeah? Because when we work together,
6: it all adds up.
8: So come on, you lot. Search Let's Save Water.
9: Sunrise and music.
1: Right, welcome back, listener. You're listening to Radio 103.2 FM. Or others, Akhtar Sahab, aapka jo message maine convey kar diya aur bahut bahut shukriya aapka bhi. Aur yahan pe hamara saath de rahe hamare mohtaram bhai hain, dost, jitne ki main tareef karna kam hai, Madrasa Kiani Sahab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
10: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. जनाब, सबसे पहले तो मेरे जितने भी दोस्त हैं को मेरा दिल से दिल की गहराई से अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
10: जितने भी सुन रहे हैं माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनको सबको सेहत तंदुरुस्ती दे और लंबी उम्र दे. अल्लाह पाक इनको जो है वो खुश आबाद रखे.
1: आमीन.
10: और शुरू अल्लाह पाक की ज़ात से करूँगा.
1: जी,
10: अल्लाह की जात से करूंगा. बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. अल्लाह पाक की जात से करूंगा जो नहायत ही मेहरबान रहीम और रहमान है.
1: जी,
10: तो शेरा के ना जाने क्या ये मुझसे जमाना चाहता है.
1: हाय हाय हाय हाय, क्या कहने.
10: जाने क्या ये मुझसे
1: जमाना चाहता है. वाह,
10: पल हर कोई दिल दुखाना चाहता
1: है. वाह वाह वाह वाह, क्या कहने. पसूम.
10: जाने क्या ये मुझसे जमाना चाहता है. पल और कोई दिल दुखाना चाहता है.
1: वाह.
10: हाँ, जाने क्या छलकता है मेरे चेहरे से.
1: हाय हाय.
10: जाने क्या छलकता है मेरे चेहरे से. तो शख्स मुझको ही आजमाना चाहता
1: है. वाह वाह वाह वाह, क्या कहने.
10: चेहरा के ना जाने कौन सी शोहरत इंसान को नाद है.
1: आहा वाह.
10: जाने कौन सी शोहरत पे इंसान को नाज है. इंसान तो खुद अपने आखिरी अमल का मोहताज
1: है. वाजी वाह, बहुत खूब बहुत खूब.
10: ताकि मेरी गुर्बत ने किया मुझको जमाने में बदनाम.
1: वाह.
10: गुर्बत ने किया
1: जमाने ने
10: जमाने में बदनाम.
1: वाह.
10: तेरी दौलत है जिसने तेरे ऐब छुपा रखे हैं.
1: आए हाय हाय हाय, क्या कहने क्या कहने.
10: गुर्बत ने किया मुझको जमाने में बदनाम.
1: वाह.
10: तेरी दौलत है जिसने तेरे ऐब छुपा रखे हैं.
1: वाह.
10: वेरी मच सर. मेहरबानी, क्योंकि टाइम बड़ा शॉर्ट आता बंदे बहुत सारे तुमने क्यों चेहरे.
1: बहुत बहुत बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई, आपने हाजिरी लगाई है. बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया सर. थैंक यू वेरी मच.
10: ठीक है जनाब, बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया.
1: थैंक यू सर, नवाज़िश आपकी, बहुत बहुत शुक्रिया. रब रखा. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़. ये थे हमारे मोहतरम भाई दोस्त, जितनी की मैं तारीफ करूँ कम है. और यहाँ पे हमारा साथ दे रहे हैं हमारे बड़े ही प्यारे, हमारे खूबसूरत, जितनी भी की मैं तारीफ करूँ कम है. और जब भी मैं कहता हूँ ना, और माशाल्लाह माशाल्लाह और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, जब मैं कहता हूँ मैं अपने मेरे सज्जन, जब मैं कहता हूँ मुर्शिद, और माशाल्लाह ये आगे हैं और अच्छा आगे हैं माशाल्लाह. और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
11: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.
1: ये आपके लिए सर. सर आपको वेलकम, जी अनु, खुश आमदीद, सत बिस्मिल्लाह आपके लिए.
11: शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया
1: सर जी. और मुझे बड़ा ही मलाल हुआ, बड़ा दुख हुआ लास्ट वीक में. और
11: नहीं, कोई नहीं,
1: देखो. और आपको थैंक यू. ये देखो मैं ऑन एयर कह रहा हूँ कि एक माशाल्लाह माशाल्लाह की आपकी तबीयत को मैं सलाम पेश करता हूँ, आपकी सलूर करता हूँ मैं. तो चलो आज हमारे लिए क्या लेके आए हमारे लिए.
11: आपके लिए पहले तो तमाम सुनने वालों को
1: वालेकुम असलाम व रहमतुल्लाहि.
11: ठीक है जी, हैं कृष्ण भाई, आए थे
1: जी,
11: और भी जितने हैं, टाइम थोड़ा है इसलिए नाम नहीं ले.
1: जी जी जी जी.
11: तो सबको मैं अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम.
11: एक गजल है, ख्वाजा शौक इनका नाम है.
1: जी जी, ख्वाजा शौक. जी जी.
11: वो कहते हैं कमाल हुसन का इकरार कर जाना ही पड़ता है।
1: वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने,
11: कमाल हुसन का इकरार कर जाना
1: ही पड़ता है,
11: अदाएं इतनी काफिर हो तो मर जाना
1: ही। हाय हाय, इसको मुकरर जी, मुकरर मुकरर, क्या कहने, वाह।
11: कमाल हुसन का इकरार कर जाना ही पड़ता है,
1: वाह।
11: अदाएं इतनी काफिर हो तो मर जाना
1: ही पड़ता है, वाह वाह वाह वाह, क्या कहने, वाह।
11: कोई मंजिल हो मजबूरे सफर है हौसले वाले, गुजर मुश्किल से ही लेकिन गुजर जाना ही पड़ता
1: है, वाह वाह वाह वाह वाह वाह।
11: तलब में तेज गामी हर जगह मौजू नहीं होती,
1: वाह।
11: जहां में वक्त ठहराए शहर जाना ही पड़ता
1: है, वाह वाह, क्या कहने।
11: कहां तक नाज बरदारी तेरे है गर्दिशे दौरा,
1: वाह वाह।
11: कहां तक नाज बरदारी तेरे है गर्दिशे दौरा, चढ़े दरिया को एक दिन उतर जाना
1: नहीं पड़ता, हा हा हा, क्या कहने।
11: ये
1: वाह,
11: गुलिस्तां हो के सहरा कोई कातिल हो के मैखाना,
1: आहा।
11: जिधर तकदीर ले जाए उधर जाना ही पड़ता
1: है, वाह वाह वाह वाह, पोसु वाह।
11: तेरे जलवों की ताबानी संभलने ही नहीं देती, नजर को होश की सूरत बिखर जाना ही पड़ता
1: है, हाय हाय, क्या कहने क्या कहने क्या कहने, वाह वाह।
11: रवा है कारवाने जिंदगी लम्हों की सूरत में,
1: आहा।
11: बिखरते टूटते शामों सहर जाना ही पड़ता
1: है, वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब बहुत खूब।
11: वो जाते हैं तो साथ उनके नजर तनखा नहीं जाती, हमें भी दूर हमरा है नजर जाना
1: नहीं पड़ता, वाह वाह, क्या कहने।
11: कभी हालात उस मंजिल पे लाते हैं इंसान को, कभी हालात उस मंजिल पे भी लाते हैं इंसान को, कि सब कुछ जान कर सब से गुजर जाना ही पड़ता है,
1: क्या कहने मेरे भाई, क्या कहने, बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब, वाह मजा आ गया, क्या कहने।
11: कहते हैं जमीन दिल की शादाबी है वादिस से, बहार आए गुलशन को समर जाना ही पड़ता
1: है, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, बहुत खूब।
11: तो ये आखिरी शेर आपके नाम,
1: वाह वाह माशाल्लाह, क्या कहने जी अरशाद।
11: ये मजबूरी नहीं कोई,
1: वाह।
11: ये मजबूरी
1: नहीं कोई,
11: तो है शौक अपना, परवेज खान के बुलावे पर जाना ही पड़ता है,
1: हाय हाय हाय हाय हाय, सदके जावा कुर्बान जावा पे। इसको दोबारा करें जी, वाह, इसको जो दोबारा करेंगे यहाँ पे, और क्या कहने जी, मैं यहाँ पे दोबारा करें जी, बिस्मिल्लाह करें, और यहाँ पे जी,
11: ये मजबूरी नहीं कही, ये तो है शौक अपना,
1: वाह।
11: परवेज खां के बुलावे पर जाना ही पड़ता
1: है, वाह वाह वाह वाह वाह वाह, क्या कहने जी। और इसीलिए मैं कहता हूँ, वाह जी वाह, और इसीलिए मैं कहता हूँ, आज भी आपने महफिल लूट ली है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और बहुत अच्छा लगा, वाह।
11: अभी एक सुनानी थी मैंने आपको,
1: नहीं नहीं सुना दे, क्योंकि हमारे पीछे जो ना हमारे अपने, वो भी हमारे अपने हैं, अब्दुल कयूम साहब हैं, वो माइंड नहीं करेंगे, क्योंकि बहुत अच्छे हमारे भाई हैं, और आपका शुक्रिया अदा करें, अतीका साहब हैं, उन्होंने कहा कि बहुत खूबसूरत है आपकी शायरी है, बहुत ही ब्यूटीफुल शायरी है, और आदर सुहेल अख्तर साहब भी वो आपको सलाम पेश कर रहे हैं, तो वो भी आपको पसंद कर रहे हैं, उन्हें वो हमेशा ही पसंद करने, वो आज भी उन्होंने पसंद किया है, वो कह रहे हैं ज़बरदस्त कमाल कर दिया आपने, वाह।
11: ये जो है ना हमारा पाकिस्तान शो में पाकिस्तान आ रहा है ना,
1: जी जी जी, 14 तारीख, जी जी जी जी, 14 जी,
11: मैं कुछ कहूँगा
1: जी जी, आप क्यों ना कहें सर, आप मुझे क्यों शर्मिंदा कर रहे हैं, और काश फ्राइडे के रोज़ में यहाँ पे होता प्रोग्राम, करता स्पेशल प्रोग्राम होता, तो मैं आपको दावत देता, बिलीव करें जी। अरशाद अरशाद जी,
11: वो बात ये है कि मिर्जा गालिब साहब थे ना जो,
1: जी जी जी जी,
11: वो चौसर खेल रहे थे पकड़े गए,
1: अच्छा,
11: उसके खेलने की वजह से उन्हें जेल हो गई 6 महीने की,
1: अच्छा,
11: तो जमाना था गोरों का जमाना था,
1: जी गोरों का जमाना था, जी जी,
11: या तो जेल के बाद वापस घर आए,
1: जी
11: लोगों ने मुबारकबाद दी कि आप आजाद होकर आ गए,
1: वाह।
11: वो एक जब रहते थे ना किराए पे रहते थे, एक काले खां
1: जी
11: आदमी था उसके घर में रहते थे,
1: जी जी अच्छा,
11: तो जब उसने मुबारकबाद दी तो कहने लगे भाई कौन बड़ुआ कहता है कि आजाद हो गया हूँ, पहले घोरों की कैद में था,
1: अब
11: कैद में आ गया
1: अभी इसके कैद में आ गया हूं तो तक देखो क्या क्या बात देखो और इसके बारे में मैं क्या कहूंगा यहां पे बैठ के और अब मैं क्या कहूंगा क्योंकि ये ना हो कि मैं कुछ बात कह दूं तो ऊपर से वो आ जाए तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगेगा और यही बात है चलो अल्लाह हम दुआ करते हैं सबके लिए दुआ करते हैं और सबके लिए दुआएं करेंगे वो भी हमारा ही है बस क्या करें बस जश्न
11: इस्तकलाल है खुशियां मनाओ दोस्तों
1: जी
11: आज आजादी के मिलकर गीत गाओ
1: दोस्तों आई हाय हाय हाय वाह
11: हर तरफ चिरागा हो रहा है आज की रात ऐसे आई हो जमीन पर चांद तारों की बरात
1: आई हाय हाय हाय हाय
11: लेकिन ये आजादी की खुशियां और ये सब धूमधाम वाह जुल्म से शबाए गम का तो नहीं है इख्तिमाम
1: वाह
11: आज भी पेशे नजर दुश्वार मुश्किल मरहले और भी बाकी हैं कुछ को है तलब के सिलसिले
1: हाय हाय हाय हाय क्या कहने क्या कहने
11: आज भी इंसान से इंसानियत मौजूद है आज भी इंसान को हैवानियत मौजूद है
1: हाय हाय हाय हाय हाय
11: बिजलियां बेताब हैं के लिए कसरे ला कानूनियत को खाक करने के लिए इससे पहले कि आ जाए बलाए हश्र खेज इसके के वारद हुआ ताबे लर्जा खेज पाक हो जाए ये पाकिस्तान हर एक मजमूम से और गुजर जाए हुर्रियत के गलत मफहूम से
1: वाह जी वाह क्या कहने वाह आमीन कहेंगे इस प्यारे में अल्लाह रहम करे अल्लाह रहम करे बस हम खुद मजबूर हैं मेरे भाई मैं क्या करूंगा बहुत कुछ कहना है बस मजबूर हूं और बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें याद किया और बड़ी मेहरबानी शुक्रिया आपने महफिल लूट ली है बहुत बहुत शुक्रिया सर आपको बहुत बहुत शुक्रिया
11: थैंक यू
1: बहुत बहुत शुक्रिया अपना ख्याल रखें दुआ में याद रखें जज़ाकअल्लाह खैर बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू ये थे हमारे मोहतरम भाई दोस्त और मुर्शिद हैं हमारे बहुत बहुत शुक्रिया इनका भी और क्या कहेंगे बारे में और यहाँ पे टाइम चेक करना है उसके बाद हमारे साथ हैं अब्दुल कयूम साहब हैं
9: Sunrise Radio, your soundtrack, your time check.
1: The time in the studio is 43 minutes past 10 in UK. Good evening, good afternoon, good morning, good night, wherever you are. Keep it locked on, keep it locked on with the power is gone. Baba shukriya sab doston ka aur jo bhi mere behan bhai hain sath hi dost baba hain aur sabko meri taraf se mashallah aur hum yahi kahenge duaen karenge sabke liye duaen kare aur hamari yahi duaen hain sabke liye duaen hain aur sab khoobsurat hain apni apni jagah pe everybody is unique their own way aur baba shukriya aap सब के भी और यहाँ पे छोटी सी ब्रेक करेंगे ब्रेक के फौरन बाद है यहाँ पे हमारा साथ देने अब्दुल कयूम साहब है एक बहुत बड़ा नाम है माशाल्लाह योकशायर का बरफड का और यहाँ छोटी सी ब्रेक करेंगे
4: ऋषि's विजन प्रेजेंट्स आनंद उत्सव विद आनंद मूर्ति गुरुमा इन बर्मिंगम डिस्कवर प्रैक्टिकल टूल्स टू क्वाइट इन द माइंड एंड एक्सपीरियंस लास्टिंग इनर पीस डायरेक्टली फ्रॉम द रिवर्ड मास्टर A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny. 07901-831-165 Raman 078-341-77866 Usha 0793-178-8062 Visit www.rishisvision.org और www.guruma.com
12: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है यॉर्कशायर मैनचेस्टर ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043 Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6 Junction 7 Chapel Lane, Birmingham B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831165, Raman 078 341-77866, Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
13: Sunrise and music. It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you? When

0: Right, welcome back, listener. You're listening to Sunrise Radio 103.2 FM, और यहाँ हमारा साथ दे रहे हैं हमारे बहुत ही प्यारे भाई हैं, और जितनी भी इनकी मैं तारीफ करूँ कम है, अब्दुल कय्यूम साहब ऑल द वे फ्रॉम फ्राइजिंग और से वेलकम जी एन खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
1: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमेशा की तरह आपका प्रोग्राम बहुत बिजी जा रहा है, मुझे लाइन मिलाने में आज मेरा ख्याल है कोई तकरीबन पौना घंटा गुजर गया
0: माशाल्लाह। और आपकी दुआ है ना, आप मेरे लिए दुआएं करते हैं उसका सिला है ना, और माशाल्लाह बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, थैंक यू वेरी मच आपके लिए दोबारा।
1: मैं
0: जी
1: शुक्रिया शुक्रिया
0: जी,
1: कोई गुजारिश करूँ तमाम सुनने वालों को जो इस वक्त घरों बाजारों दुकानों फैक्ट्रियों कारखानों में होटलों में रेस्टोरेंटों में खेतों में खलियानों में इस पार उस पार जहाँ की भी ये नशरियात सुनी जा रही है
0: माशाल्लाह,
1: मैं सबको सलाम पेश करता हूँ। और खासकर हमारी बाजी अतीका बाजी जो है ना वो हमें बहुत याद करती रहती
0: है,
1: उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। तो आज मेरे पास एक गजल है और कुछ अशआर भी हैं, तो मेरा ख्याल है ये पढ़ लेते हैं। मैं जानता था ऐसा भी एक वक्त एक दौर आएगा, मैं जानता था ऐसा भी एक दौर आएगा, दीवान भी मेरा तू हर एक से छुपाएगा।
0: वाह वाह क्या कहने,
1: दीवान भी मेरा तू हर एक से छुपाएगा, पूछेगा जब कोई तेरा दुख आज़राए खलूस, तू इसको दूसरों के फसाने सुनाएगा, और जो बात भूलने की है वो याद आएगी तुझे। शुक्रिया। जो बात आएगी जो बात भूलने की है याद आएगी तुझे, रखना है जिसको याद उसे भूल जाएगा। और शेर है
0: जी,
1: दिल सोखता मिलेगा तुझे जब कोई कहीं, दिल सोखता मिलेगा जब तुझे जब कोई कहीं, शिद्दत से एक शख्स तुझे याद आएगा। छोड़ा है इसको शहर फकत इस ख्याल से, छोड़ा है इसका शहर फकत इस ख्याल से, जब हम न होंगे तो वो किसको सताएगा।
0: वाह वाह।
1: और उसने भी कर लिया है ये वादा कि उम्र भर कुछ भी हो अब वो दिल न किसी का दुखाएगा।
0: हाय हाय हाय वाह
1: जी। तो
0: जी जी
1: सॉरी,
0: कोई बात नहीं।
1: अच्छा, तो ये एक गीत है मेरे पास, मेरे ख्याल है कि 1.5-2 साल से पेंडिंग पड़ा हुआ, तो अब इसकी बारी
0: है। वाह क्या, जो पिछले हफ्ते आपने गीत गुनगुनाया था बड़ा ही प्यारा, बहुत खूबसूरत, बड़ी क्या बात है,
1: मुझे कल की बात याद नहीं रहती।
0: अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह,
1: जो खाया भी है वो भी याद नहीं,
0: वो कोई बात नहीं, कोई बात
1: नाम आपका नाम दोस्तों का नाम हमेशा मेरे दिल पर रहता है।
0: वाह जी वाह वाह जी।
1: पागां वालियो नाम जपो मौला नाम,
0: माशाल्लाह
1: मौला नाम नाम, पागां वालियो नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम नाम, बंदा मकड़ी तोले तकड़ी, बंदा मकड़ी तोले तकड़ी, हाथ विच लकड़ी जपदा जावे मौला नाम नाम मौला नाम नाम, पागां वालियो नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम नाम।

इश्क दे रमजनी जान दे मौला नाम ना पागा वाले ओ नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम नाम हुसन जवानी दुनिया फानी हुसन जवानी दुनिया फानी छह हर कहानी जानी रहे मौला नाम नाम मौला नाम नाम पागा वाले ओ नाम जपो मौला नाम नाम मौला नाम नाम ओखियां रामा

0: मौलाना नाम मौलाना नाम पागल वाले ओ नाम जपो मौलाना नाम मौलाना
1: ब्यूटीफुल क्या कहने मेरे भाई, बड़ा ही खूबसूरत कलाम आपने सुनाया, बहुत खूबसूरत, मज़ा आ गया जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप आए, बहुत बहुत शुक्रिया, और आपको सब सलाम पेश कर रहे हैं, उन्होंने इन्जॉय भी किया, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़। और ये थे हमारे मोहतरम भाई दोस्त अब्दुल कयूम साहब, ने कमाल कर दिया, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, बहुत बहुत शुक्रिया इनका, और हम शुक्रगुजार करते हैं सबका, जो भी मेरे बहन भाई हैं, साथी दोस्त बाब अजीज़ हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका भी, और वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, जो भी मेरे बहन भाई आए लाइव कॉल में, उनका शुक्रगुजार हूँ, ममनून उनका, और नो फॉरगेटिंग द पीपल ऑल केम इन बिटवीन आवर्स ऑफ 8 and 9, 9 and 10, 10 and 11, थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम विशिंग एवरीबॉडी, आई एम नॉट गोना बी हियर ऑन फ्राइडे बिकॉज़ इट्स नॉट माय प्रोग्राम फ्राइडे, एंड wishing everybody happy independent day on friday on the saturday as well, all the pakistanis mashallah, and jo pakistan ke mana rahe hain, and not forget in india as well, jo manayenge saturday ko, aur unke liye bhi hum dua go hain, and we know we love and respect everybody, aur bahut bahut shukriya aapka bhi, thank you very much, and thank you very much for all those calls coming, and abhi bhi mujhe calls aa rahi hain, aur bahut bahut shukriya simi ji, bahut bahut shukriya aapka bhi, thank you very much, और थैंक यू वंस अगेन टू ब्यूटीफुल कॉलर्स, और हमेशा एक बात करना चाहता हूँ कि आप सब खूबसूरत हैं, बिलीव करें, इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू, एक एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम है, मनोरंजन है, इसमें आप आके माशाल्लाह शेर शायरी करते हैं, गाना गुनगुनाते हैं, अच्छी बात करते हैं, एंड वी आर फैमिली, वी आर फैमिली, वी आर डेफिनेटली फैमिली, और थैंक यू फॉर वंस अगेन फॉर द ब्यूटीफुल कॉल्स, एंड ऑल आई मिस्ड अ फ्यू कॉल्स टुडे, शुक्रान, मुझे बहुत मलाल हो रहा है, दुख हो रहा है कि आपको कॉल नहीं मिली आज, शुक्रान भाई आपका शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ आपका भी, सजद भाई हैं हमारे, राय अजहर साहब हैं स्कॉटलैंड से, उनको लाइन नहीं मिली है, सईद एहसान हैं, उनको आज लाइन नहीं मिली है, आई डू अपोलोजाइज, तो गीता जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, थैंक यू वेरी मच, किसी रोज़ गीता जी आपको मैं यहाँ पे क्या करें, मैं क्या करें, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, और यू नो ब्यूटीफुल एज वेल, रूबी जी हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी, और हमें अच्छा लग रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, इंशाल्लाह, और जल आई विल बी हियर अगेन इंशाल्लाह संडे इवनिंग between hours of 8 and 11, where we're going to be having a party in the studio, as always. And before I go, I would wishing once again all those Independence Day, mashallah, on Friday and Saturday as well, mashallah, jo bana rahe hain, mashallah, jo banayenge, aur bade adab adab se, bade pyar ke saath apne manana hai, aur duaein kare, sab ke liye duaein kare, doesn't matter if he's in Friday or if he's in Saturday, we all in one. We are all in one as well. और हमेशा मैं कहता हूँ एक दूजे का ख्याल रखें, एक दूजे के सोचें समझें, और that's what the beauty all about. And think about the humanity, think about the humans. That's very important as well. And हम ये बातें करते हैं, ये है वो है, दुनिया में सब खूबसूरत हैं. There's nobody is, you know, that's why you heard the name and you heard everybody else as well. You know how it is. You always have a good and the bad. And the ugly as well, and this is part of life, this is part of the journey as well, and you have to, you know, appreciate everybody, and that's what it's all about. And yahan pe humne ye geet pesh karenge aapke liye, thoda sa gaana sunenge aap aur enjoy karein.